0: in Itanagar for treatment. Now, the army choppers, we learn, have been deployed for the rescue operations. Meanwhile, search for those missing have been continuing amid challenging weather conditions as well. Ratnadeep is joining us on the phone line. Ratnadeep, what more details can you share with us as far as the rescue operations is concerned?
1: Well, in fact, in Arunachal Pradesh, for the past 24 hours, there have been heavy rains, and there is an orange alert for more rains. And this incident happened on yesterday, in fact, when there was a massive landslide in Upper Subansiri district, in an area which is under the Nacho police station, where the initial information was that at least four laborers were feared dead. And then the authorities, after hours of rescue operations, they have confirmed this evening that four laborers were confirmed dead, out of which three dead bodies have been recovered. The attempts have been made for recovery of the other body. In fact, this not only this incident, but also there has been a cloudburst in Upper Dibang Valley, and due to that, there was flash floods and landslide. And in that incident, several army jawans are missing. Basically, two temporary camps of army outpost in that area, which is not very far from the line of actual control that India shares with the Tibet Autonomous Region of China. In that area, you have a lot of army presence and two temporary army shelters, which are where you have forces in less number. They were washed away because of the flash flood, and in which two army jawans were rescued. But what we have been given to understand by authorities is that at least five or more than that, army has not specified the number as of now officially. These army jawans are missing. There is a massive search and rescue operation which continues there.
0: All right, Ratnadeep, thank you very much for getting us those details. Moving on, let's tell you about the big political debate that erupted today in the national capital. While at the Congress headquarters in Delhi on Independence Day, the version of Vande Mataram was sung. Now, it was sung in a manner that it triggered a big political controversy. The political fight erupted after a video showed Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and the leader of opposition Rahul Gandhi making gestures while the rendition continued. The BJP has alleged that the leaders were signalling for the song to be stopped, alleging the Congress party till date has still resisted the full redemption of Vande Mataram and have insulted the national song. Meanwhile, on the other hand, the Congress party has denied any such attempt, saying that Sonia Gandhi was only asking for a chair for Mallikarjun Kharge, who had been standing for quite some time. The footage subsequently sparked a wider political row over Congress's position on the full redemption of the national song. Here's what both sides have to say on the big political controversy.
2: हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
3: लाल किला पर वंदे मातरम गाया गया, दोनों विपक्ष के नेता वहां नदारद थे और पूरे देश में जहां भी झंडा तोलन हुआ पहले वंदे मातरम गाया गया। हमने भी अपने निवास पर झंडा तोलन किया, पहले वंदे मातरम हुआ, पूरा गाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उसको रोका। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण।
4: कानून के हिसाब से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, हम मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
3: वो नियम के हिसाब से सभी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया है, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास, तो कार्रवाई तो होगी।
5: Today it's a matter of national shame that the leader of opposition and Madam Sonia Gandhi skipped the Independence Day celebrations at the Red Fort for the second consecutive year. Independence Day should not be partisan. It is a joyous occasion for every Indian. And if the reason was that anything to do with the parliament, first parliamentary debate are totally separate from celebrating these national occasions, which are a matter of pride for all Indians.
6: 1937 28 अक्टूबर कलकत्ता का सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन में स्पष्ट जो हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का, वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए।
7: लेकिन आज तो पूरा बचा
6: है, कह रहा हूं चलाना चाहिए।
8: द कांग्रेस पार्टी इज नॉट अ पेट्रियोटिक पार्टी। द कांग्रेस पार्टी हेट्स एनीथिंग व्हिच इज नेशनलिस्ट एंड पेट्रियोटिक। दिस इज व्हाई सोनिया गांधी व्हेन द वंदे मातरम वाज बीइंग रिसाइटेड एट द कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स वाज एक्सट्रीमली एंग्री एंड एजिटेटेड एंड लुक्ड एट राहुल गांधी एंड बोथ सोनिया एंड राहुल वर एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड दैट हाउ कम एट द कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स वंदे मातरम वाज रिसाइटेड। दिस शोज यू दैट द डीएनए ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज नॉट प्रो इंडिया, द डीएनए ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज वीक इंडिया। And this is precisely why Rahul Gandhi did not attend the 80th Independence Day celebrations at the Red Fort. This also points towards one thing, that the Congress party is suffering from Dimagi Naxal mindset, which the Honorable Prime Minister spoke about. This is why it is no longer a coincidence that the Indian National Congress today is not Indian National Congress, but Dimagi Naxal Congress.
9: ये कोई मुद्दा है ही नहीं। 37 में आदरणीय हमारे जब बापू महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीत लिखा था उनके बीच में मध्यस्थता बातें हो गई थी और देश को सौंपा गया था कि केवल पहला लाइन जो पहला पंक्ति है वंदे मातरम का उसको गाना है। आज हमने उसको फॉलो किया जो हमारे महापुरुषों ने दी।
10: इनको क्या संबंध है वंदे मातरम से? हमारा संबंध वंदे मातरम से 1931 में कांग्रेस ने इसको एडॉप्ट किया है, इनका कोई संबंध ही नहीं है। जो 50 साल तक जो है अपने हेडक्वार्टर पर आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनको क्या अधिकार है बातें बोलने का? तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसका जवाब आपको प्रॉपर वे में मिलेगा।
11: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पर विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
7: तो भी बीच में एक कांग्रेस नेतृत्व,
11: एक मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादरे वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादरे वतन है, तो हम उस मादरे वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं।
0: From the Red Fort today, Prime Minister Modi's Independence Day address carried two clear messages and a warning against what he called Dimagi Naxal, that is the mindset problem, and a major push to put Yuva Shakti at the heart of a Vikasit Bharat vision. From AI skills and free coaching to a nationwide sports talent hunt, the Prime Minister has laid out a roadmap aimed at equipping India's young population for the future.
12: From the ramparts of the Red Fort, PM Modi delivered two key messages: a warning against the Dimagi Naxal mindset and a powerful call to India's youth to lead the march towards a Viksit Bharat. Prime Minister Modi said the era of red terror has been defeated, but he warned against the ideology behind it. Dimagi Naxal mindset continues to exist.
13: देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
12: But the Prime Minister's message was beyond dimagi naxal. At its core was a bigger call to harness the power of Yuva Shakti and make India's youth the driving force of its future. Modi announced AI skills training for 1 crore young Indians, preparing them for an economy increasingly driven by technology. He also announced free online coaching aimed at widening access to learning and competitive opportunities. And the youth push extends beyond academics. A nationwide sports talent hunt will seek to identify promising athletes among children aged 5 to 15.
13: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। इस चुनौती से हमें और
12: फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एथलेटिक्स द मैसेज वाज क्लियर। इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन मस्ट हैव द स्किल्स, opportunities and confidence to compete with the world. Modi also highlighted the expansion of universities and medical seats as part of his broader Viksit Bharat vision. Two messages from the Red Fort, one larger theme: isolate the Dimagi Naxal mindset and unleash India's Yuva Shakti to harness the energy of young India and build a Viksit Bharat. Bureau Report, NDTV.
0: Also in the Red Fort address, the Prime Minister has once again put women's political representation at the center of the national conversation. But this call for greater consensus comes amid a fresh political row over the implementation of the Women's Reservation Act and its linkage with the delimitation. The Congress says women's reservation should not be tied to exercise of redrawing the Lok Sabha constituencies. The law was passed by Parliament in 2023. But its implementation remains tied to the delimitation process. Now, the Prime Minister's Independence Day pitch has brought the issue firmly back into focus.
13: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए।
12: A call for greater representation. A call for political consensus and a push to give women their rightful space in India's democracy. From the ramparts of the Red Fort, a powerful message on Nari Shakti in his Independence Day address. Prime Minister Modi also highlighted the growing contribution of Nari Shakti in the country's political journey.
13: Aaj panchayaton mein, nagarpalika mein, mahanagarpalika mein, bahut badi matra mein हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही हैं, समस्याओं का समाधान कर रही हैं, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीति का अखाड़े का शिकार हो गया है।
12: But the Prime Minister's pitch has now triggered a political counter. The opposition questioning the government's move and alleging that women's reservation is being linked to the larger delimitation exercise.
6: कौन महिला आरक्षण का सबसे बड़ा आज अगर कोई है पायनियर इस देश में तो कौन है? सोनिया गांधी है। अगर इनकी नियत में महिला आरक्षण होता तो 2023 से 26 तक क्या बैठे होते उस पर बिल पर?
14: The issue is the intention of this government and the Prime Minister is not women reservation. They want to bring in delimitation under the garb of women reservation.
15: The Congress says the question is not whether women deserve reservation. The question, they argue, is why link it to delimitation.
16: महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था। कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की, हम सब की सरकार थी, हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है, महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है।
15: एंड दैट ब्रिंग्स द स्पॉटलाइट बैक टू अ लॉ दैट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट नियरली 3 decades अगो।
17: हाँ, 454, ना 2-2।
15: द स्टोरी गोज बैक टू सितंबर 2023। The Women's Reservation Bill cleared the Lok Sabha on September 20th with an overwhelming majority. A day later, the Rajya Sabha passed it unanimously with 214 votes in favor. President Draupadi Murmu then gave her assent to the legislation. But in April 2026, the women's quota debate entered a new phase. The government brought a fresh legislative proposal linked to increasing the strength of the Lok Sabha and redrawing constituencies. The government's argument, the exercise would help pave the way for implementing women's reservation. But the opposition objected to the two issues being linked, and the political deadlock continued. Now, from the Red Fort, Prime Minister Modi has once again put Nari Shakti at center stage. Bureau Report, NDTV.
0: And now we get you these visuals where a massive tricolor yatra was held in Navi Mumbai's Kharghar to mark India's 80th Independence Day. The nearly 1,000-foot tricolor was carried by over 1,700 students, teachers and citizens from Ramshed Thakur Public School to Utsav Chowk amid chants of Vande Mataram and Bharat Mata Ki Jai.

0: alleging brief PLA patrolling face-offs in the upper Subansiri district. India's messaging at the latest diplomatic rounds was entirely uncompromising. The MEA delivered a blunt ultimatum. Beijing cannot run with the hare and hunt with the hounds. Jaiswal reiterated that maintaining absolute peace and tranquility on the line of actual control is the mandatory prerequisite. The health of larger bilateral ties relies entirely on a peaceful border. India's legal maps are heavily backed by physical concrete and steel on the ground. Through the hyper-accelerated frontier highway project and the critical all-weather Sela Tunnel, New Delhi proves it is always a step ahead of any expansionist designs. Under the targeted Vibrant Villages program, frontier outposts like Malja and Bisa are fully fortified. 80 years into its independence, a modern, resolute India stands tall, proving its territory is completely non-negotiable. We report NDTV World.
1: Make no mistake, the days of India merely reacting to expansionism are dead and buried. Beijing can keep churning out its fictional maps, but maps don't change ground realities. Concrete, steel and boots on ground too. 80 years of hard-fought independence and freedom have taught this nation one clear lesson. You do not negotiate with a dragon. You simply build a fortress that it can never breach. Arunachal was, is and always will be part of India, period. All right, on that note, a quick break. We return with more on the other side.
2: एनडीटीवी और एनडीटीवी के तमाम दर्शकों को एनडीटीवी के रीलॉन्च होने पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, विश्वास रखता हूं कि जिस तरीके से एनडीटीवी ने निरंतरता में स्पष्ट सही जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम किया, आगे भी उसी जिम्मेदारी से ये इस उत्तरदायित्व को निभाने का कार्य करेंगे।
3: मैं एनडीटीवी और उनके दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम विकसित भारत कैसे बने, हमारे विकसित गांव कैसे बने, उस दिशा में एनडीटीवी अपने पॉजिटिव व्यूज और हमेशा सार्थक रहेगा।
4: कंग्रेचुलेशंस एनडीटीवी ऑन योर न्यू अवतार, ऑलवेज स्टैंड अप फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी।
5: माय बेस्ट विशेस टू एनडीटीवी एज ऑलवेज, एंड आई एम श्योर इन द न्यू फॉर्मेट पीपल विल गेट इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इंफॉर्मेटिव न्यूज।
6: आई विश द एंटायर एनडीटीवी एंड इट्स टीम ऑल द वेरी बेस्ट।
7: आई विश NDTV and the whole team and all the viewers the very best.
8: For NDTV परिवार को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता
9: हूँ। NDTV team, all the very best.
10: Electricity bill paid.
11: Really?
10: Your mobile recharge is done.
11: How?
10: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
11: It's the Mahi way. Thode mein zyada swaad, ye hit to hai iski khas baat.
12: Wow, mama, kya swaad hai?
11: Arey, meri raja. Sabka raja aur pure masala.

0: and he asked for the cabinet minister, and Congress offered him the Ministry of State position. The Sonia Gandhi had already had decided to take him into the Congress, and she had given a green signal to take him into the Congress. Everything was the set that Prithviraj Chauhan had claimed that. Then after that, he went to the former Prime Minister Manmohan Singh, and he shared that idea that Manmohan Singh scolded him, and he was angry with this idea. He said, if we are taking the deputy opposition leader into the Congress, that would like to give a bribe to the opposition, and he told them that just call off this idea, and that idea was dropped, and that this idea. And after that, Chauhan said that Gopinath Munde was eager to join Congress just because of his rival Nitin Gadkari. He was a national president, and he reportedly being the sideline, and he was not happy in the BJP. After this comment, right, we asked some BJP leaders. A BJP leader claimed that.
1: Absolutely, Prajakta, thank you so much for joining us and breaking down those political developments for us. We actually have some more updates coming in at this hour. Let's take our viewers through them. Now, at the Congress headquarters in Delhi on Independence Day, the version of Vande Mataram was sung, triggered a political controversy. The political fight erupted over a video of Sonia Gandhi and Mallikarjun Kharge and even Rahul Gandhi making gestures while their rendition continued. The BJP alleged that the leaders were signalling for the song to be stopped, alleging that the Congress party till date resists the full redemption of Vande Mataram. The BJP even says that the Congress party have insulted the national song. Now the Congress party has denied any such attempt, saying that Sonia Gandhi was only asking for a chair for Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. The footage subsequently sparked a wider political row over Congress party's position on the full rendition of the national song. Here's what both sides are saying on the political controversy. Listen in.
2: हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
3: 1937 28 अक्टूबर कलकत्ता का CWC रेजोल्यूशन में स्पष्ट, जो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का, वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए।
4: लाल किला पर वंदे मातरम गाया गया, दोनों विपक्ष के नेता वहां नदारद थे और पूरे देश में जहां भी झंडा तोलन हुआ पहले वंदे मातरम गाया गया। हमने भी अपने निवास पर झंडा तोलन किया, पहले वंदे मातरम हुआ, पूरा गाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उसको रोका। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण।
5: कानून के हिसाब से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, आप मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए,
4: वो नियम के हिसाब से सभी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास जी, तो कार्रवाई तो होगी।
6: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पे जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पे विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
7: तो भी बीच में एक कांग्रेस नेतृत्व,
6: एक मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का भी रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादरे वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादरे वतन है, तो हम उस मादरे वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं।
8: For 80 years, the Congress party has only played vote bank politics.

0: एनडीटीवी की पूरी टीम को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि वो जिस तरीके से जनता की आवाज़ बन करके अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिस तरीके से वो हर खबर को और हर कहानी को जनता के बीच लेके जाते हैं और उत्साहजनक तरीके से अब वो ये काम करेंगे, ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई।
1: एनडीटीवी का नया रूप नए भारत की बदलती हुई तस्वीर है और इस नए रूप के लिए मैं एनडीटीवी की पूरी टीम को बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो सफलताओं की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, मेरी बहुत शुभकामनाएं।
2: एनडीटीवी हैज बीन अ लेगेसी नेटवर्क, जेनरेशंस हैव ग्रोन अप वॉचिंग एनडीटीवी एंड नाउ दैट इट इज कमिंग इन अ न्यू अवतार वी वेलकम इट एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द नेटवर्क।
3: एनडीटीवी हैज ऑलवेज ब्रॉट द बिग स्टोरीज क्लोजर टू द पीपल। This new avatar is fresh, dynamic and contemporary. My best wishes to the entire team of NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
4: रियली
3: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
4: How?
3: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
4: It's the Mahi way.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ
2: हेलो एंड वेलकम टू वॉचिंग प्राइम 5 विद मी आयशा सैगल
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV

0: Let's take you through the top story of the hour. At the Congress headquarters in Delhi on the Independence Day, the version of Vande Mataram was sung and it triggered a huge political controversy. The political fight erupted after a video showed Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and even Rahul Gandhi making gestures while the rendition continued. The BJP alleged that the leaders were signalling for the song to be stopped, alleging that the Congress party till date resists the full redemption of Vande Mataram. The BJP even says that the Congress party has insulted the national song. Now the Congress party has denied any such attempt, saying that Sonia Gandhi was only asking for a chair for Mallikarjun Kharge, who had been standing for all this while. The footage subsequently sparked a wider political row over Congress's position on the full rendition of the national song. Here's what both sides are saying. Listen in.
1: हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
2: 1937 28 अक्टूबर कलकत्ता का CWC रेजोल्यूशन में स्पष्ट, जो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का, वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए।
3: लाल किला पर वंदे मातरम गाया गया, दोनों विपक्ष के नेता वहां नदारद थे और पूरे देश में जहां भी झंडा तोलन हुआ पहले वंदे मातरम गाया गया। हमने भी अपने निवास पर झंडा तोलन किया, पहले वंदे मातरम हुआ, पूरा गाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उसको रोका। ये बहुत दुर्भाग्य।
4: कानून के हिसाब से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, आप मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए,
3: वो नियम के हिसाब से सारी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया है, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास हो जी, तो कार्रवाई तो होगी।
5: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पे विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
6: तो बीच में एक एक कांग्रेस नेतृत्व,
5: एक मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं, ये संघर्ष के बाद

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: Electricity bill paid.
6: Really?
5: Your mobile recharge is done.
6: How?
5: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
6: It's the Mahi way.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्थर मसाला।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: मैं NDTV की पूरी टीम को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं कि वो जिस तरीके से जनता की आवाज़ बन करके अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिस तरीके से वो हर खबर को और हर कहानी को जनता के बीच लेके जाते हैं और उत्साहजनक तरीके से अब वो ये काम करेंगे, ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई।
1: NDTV का नया रूप नए भारत की बदलती हुई तस्वीर है और इस नए रूप के लिए मैं NDTV की पूरी टीम को बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो सफलताओं की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, मेरी बहुत शुभकामनाएं।
2: NDTV has been a legacy network. Generations have grown up watching NDTV and now that it is coming in a new avatar, we welcome it and wish all the very best to the network.
3: NDTV has always brought the big stories closer to the people. This new avatar is fresh, dynamic and contemporary. My best wishes to the entire team of NDTV.
4: मैं NDTV के टीम को और NDTV के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत

0: दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अब मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए,
1: वो नियम के हिसाब से सभी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास हो
0: जी,
1: तो कार्रवाई तो होगी।
2: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पे जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पे विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
3: तो भी बीच में
2: एक कांग्रेस नेतृत्व मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का भी रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादरे वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादरे वतन है, तो हम उस मादरे वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं।
4: For 80 years, the Congress party has only played vote bank politics. They could not even say Vande Mataram proudly. And now, when they want votes in the name of Tiranga, they play a narrative which is shameful. I think that any person who does not sing the national song with respect only shows you that they are only playing vote bank politics. And real patriotism is when you sing a song called Vande Mataram with pride. And maybe Mr. Gandhi and Mrs. Gandhi both must apologize to the nation, because Tiranga yaad karna hai to shuruaat hoti hai Vande Mataram se.
5: Jis prakar se samman mein saavdhan khade hona chahiye, उनमें से एक भी खड़ा नहीं था। बातें कर रहे थे, घूम रहे थे, और इतना ही नहीं है, खड़गे साहब ने बाद में जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने बहुत कहा कि हमने देश को ये दिया, हमने देश को ये दिया, हमने देश को ये दिया, पर वो ये नहीं बताते कि उन्होंने देश के साथ क्या किया। भारत का विभाजन किया, करोड़ों लोगों को बेघर किया, 10 लाख लोग मारे गए, ये भी तो कांग्रेस ने किया।
6: Back with us, Himanshu, an apology is being demanded. Are the hand gestures of Rahul and Sonia Gandhi being misread in this whole controversy?
7: Well, I think the most important thing that has come out is that very top Congress leaders have spoken about the October 1937 resolution of the Congress Working Committee, which stated and mandated that only 2 stanzas of Vande Mataram should be played out. It's what is significant is that it's been more than 8 decades since that resolution was passed. And today, of course, the ground reality has changed. There is a law that has been passed by Parliament that those who disrespect Vande Mataram should be penalized. There are very stringent provisions incorporated in the law that has been passed in the recent monsoon session of Parliament. There is a government order which mandates that in all important programs, the full Vande Mataram must be sung. So in that context, I think there are very clear contradictions in the Congress stand, and the kind of discomfort that we see in the video that BJP has released clearly shows that Congress top leadership is yet to, you know, adapt to or respond to this larger change that has happened with regard to Vande Mataram, the modalities of how it should be sung, etc., the government order, the new law that has been passed in Parliament. But despite all this, while the Seva Dal, which was the primary organizer of this event, had given instructions and the full Vande Mataram was played out, the Congress leaders did not seem to be aware that Seva Dal has issued such instruction, and that's why this contradiction and confusion has now been caught on camera. That's right.
6: Thank you so much for getting us those very details. Moving from the national capital to the state of Maharashtra, is former Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan, who has triggered a political row with his claim that late BJP leader Gopinath Munde had once considered joining the Congress party. He went on to claim that Munde's entry had even been received, with an approval from Sonia Gandhi herself. But then it was the former Prime Minister of India, Manmohan Singh, who had opposed that very move, saying it would be inappropriate to induct the BJP's deputy leader of opposition and make him a minister. while Munde's daughter and Maharashtra Minister Pankaja Munde has hit back, calling those remarks irrelevant and inappropriate, saying her father was a BJP leader by conviction and remained rooted in the party. Listen in.
3: त्यांच्या पिताजींना आम्ही काँग्रेसमध्ये घ्यायचा प्रयत्न केला. मी मुख्यमंत्री असताना गोपीनाथ मुंडे आमचं सगळं ठरलं. सोनिया गांधींची परवानगी घेतली, त्यांनी माझ्याकडे मत मागितलं की मला मी राजीनामा द्यावा लागेल, मला खासदारकीचा, पण मला मंत्री करा कारण मला पोटनिवडणूक लढावी लागेल. आणि दोघं म्हणजे भाजपचे नागपूरचे दोघं आहेत, ते मला काही निवडून येणार नाहीत. तिथं त्यावेळेला जातीवादाचा विषय होताच, तिथे मला मंत्री करा. मी त्यांच्याशी बोलताना सांगितलं, म्हटलं काय हरकत नाही, म्हटलं कॅबिनेट मंत्री तर एकदम शक्य होईल की नाही, ते म्हटलं राज्यमंत्री स्वतंत्र बरोबर करता येईल. आमचं सगळं ठरलं, ते गुप्तपणे आले. मी महाराष्ट्र सदनाचं राहता एका हॉटेलमध्ये राहिलो, कुणाला कळून आयुष्यातली राजकीय सर्वात मोठी चूक झाली ती की मी पंतप्रधान न विचारता सोनिया गांधींना विचारून हो म्हटलं चला जमेल. पंतप्रधानांना बोलवलं, म्हटले तू हे परस्पर त्यांना आश्वासन दिले का? लगेच लक्षात आलं, म्हटलं हो नाही मी मॅडमला विचारले पण तुम्हाला विचारायचं चुकत झाले राहिले. तर म्हटले एका भाजपच्या सत्ताधारी विरोधी पक्ष गटनेत्याला मी जर आपल्या पक्षात घेऊन त्याला मंत्री केलं ती लाज दिल्यासारखे मी बिलकुल करणार नाही.
8: ते या कमळातच जन्मले आणि कमळातच ते विसावलेले आहे आणि हे त्यांची पूर्ण जी जर्नी आहे ती जर्नी आहे. आता राजकारणामध्ये आजच्या परिस्थितीमध्ये अजूनही त्यांचं नाव लोक घेतात कोणत्याही अर्थाने. मी नाही म्हणत की पृथ्वीराज बाबांनी अनादराने घेतलंय, आदरानेच घेतलं असेल. ज्या संघटनेला मुंडे साहेबांनी एवढं मोठं वटवृक्ष बनवलं, त्या मुंडे साहेबांनी त्या संघटनेला जे दिलंय त्यानंतर मला वाटत नाही की अशा पद्धतीने त्यांच्याविषयी विचार आत्ता करण्याची आवश्यकता
9: विरोधी पक्षातील.
6: And switching tracks now from Maharashtra to Tamil Nadu, and it's Nagendran, the BJP chief in Tamil Nadu, who has stoked a controversy with his remarks when it comes to the chief minister of the state, Vijay, on Independence Day. Reacting to the chief minister, "Where's your father?" This was at DMK leader Udayanidhi Stalin. Referencing the MK Stalin's political loss, the BJP politician made an unsavory remark. He says some are searching for a father, but only by asking the mother at home can one know who the father is. That remark drew a scathing response from the TVK, which demanded an apology, calling the language low class and crossing all political boundaries. And after that backlash, it is the BJP chief who has issued a clarification, saying his intent was not to hurt anyone and that he respects all mothers and the motherland.
10: இப்படிப்பட்டவர்களுடைய ஆட்சி தான் இன்னைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும். அந்த மாதிரி சூழ்நிலையை இன்னைக்கு பாரத பிரதமர் செய்தது.
6: And with that, it's a wrap on this edition. News and updates will continue on the other side. Thank you so much for watching.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा प्योर मसाला।
0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite. The front

0: the opposition of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi on the day of independence of Vande Mataram points towards the mindset of a Dimagi Naxal ecosystem mindset. Dhyan se aap dekhiye, kyunki iske baad kai Congress party ne spashtikaran dene ka prayas kiya. Main frame by frame aapko ye batana chahta hu ki Congress ne sirf freedom fighters ka hi apman nahi, is desh ke samvidhan ka, is desh ki samprabhuta akhandta ka aur is desh ke 140 crore deshvasiyon ka apman kiya hai Vande Mataram ke udghosh ka virodh karte hue, aur ye Sonia Gandhi aur Rahul Gandhi ne kiya hai. Agar aap dekhenge dhyan se us video ko, jab Vande Mataram ka udghosh chal raha tha Congress party headquarters mein, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ. वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए. फिर जब वहां पे नहीं सुना जाता है, फिर वो वापस से दूसरी बार इशारा करती है और कहती है कि रुकना अनिवार्य है. उसके बाद में वो उनको कहती है कि पीछे जो बैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक ऐसी व्यक्ति का दृश्य है जो इतना गुस्से में है कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरी तरीके से कैसे गाया गया, तो वो इंडिकेट करती है और उंगली के तरी धमकी देने की कोशिश करती है. जब वहां से सब कुछ नहीं सही होता, तो फिर वो राहुल गांधी की तरफ देखती है और बाकी के जो कांग्रेस नेता उनके साथ में खड़े हैं उनकी तरफ देखती है और अपना गुस्सा प्रकट करती है. मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, अरे कांग्रेस पार्टी, भारत का ही उद्घोष हो रहा था, वंदे मातरम का ही उद्घोष हो रहा था, इतनी विपत्ति या इतना आक्रोश जब कांग्रेस पार्टी की रैलीज और कांग्रेस पार्टी के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे तब इनकी लीडरशिप को करते हुए नहीं देखा, पर जब कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा था तो सोनिया गांधी एजिटेटेड ही नहीं थी, गुस्से में ही नहीं थी, वो ऐसे प्रकट कर रही थी जैसे अपराध हो गया. द एक्शंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी पॉइंटेड टुवर्ड्स अ साइकी ऑफ अ दिमागी नक्सल इकोसिस्टम विच बिहेव्ड एज इफ अ क्रिमिनल एक्ट वॉज कंडक्टेड इन द कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स. ये यहीं तक नहीं रुके, उसके बाद जब वंदे मातरम का उद्घोष कंप्लीट होता है, ये लोग साथ में मिलते हैं. यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे, खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, और सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं, और मैं आपको प्ले करना चाहता हूं. कोट अनकोट राहुल गांधी कहते हैं, वी डोंट नीड टू सिंग, वी डोंट नीड टू सिंग वंदे मातरम. पहले तो राहुल गांधी जी, ये कोई गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्घोष है. ये इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो पेट्रियोटिज्म का भाव है वो है. उसके बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने गुस्से में रहते हैं कि राहुल गांधी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम. तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग ही गाता है और हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग का ही उद्घोष करता है, पर यह मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है जिसको हम दिमागी नक्सल कांग्रेस मानसिकता कहते हैं. जिस मानसिकता में इनको वंदे मातरम का विरोध करना होता है, जिस मानसिकता में पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल कहते हैं, क्योंकि हिडमा जैसे नक्सल आतंकवादी का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है, यही वो मानसिकता है जिसमें आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है. ये वो मानसिकता है कांग्रेस की जिसमें जब भी देशहित की बात होगी कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा. जब भी रेड फोर्ट पे पूरे वंदे मातरम का उद्घोष होगा तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस्सा कुर्सी का में इसको स्किप करेंगे, बिकॉज देयर हार्ट डज नॉट बीट फॉर द कंट्री, देयर हार्ट बीट्स फॉर फ्रिंज फोर्सेस. और मैं ये क्यों कह रहा हूं, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है केरला के अंदर, कल ही कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने वंदे मातरम के उद्घोष को एज ऑफिशियल फंक्शन स्किप किया. सो जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सोचा उसको लेटर और स्पिरिट में कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने इंप्लीमेंट किया, तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह कोई इत्तेफाक नहीं था। और कांग्रेस पार्टी का जितना जस्टिफिकेशन है वो इस बात पे झूठ साबित होता है कि उनकी खुद की सरकार, जहां पे उनकी सरकार है केरला के अंदर, वहां पे वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं और वंदे मातरम को स्किप करते हैं। और राहुल गांधी उसके बाद इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि जोर जोर से सोनिया गांधी के साथ में चिल्लाने लगते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। दोस्तों, मैं एक और फंडामेंटल सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश के पार्लियामेंट ने अभी अभी एक एक्ट पास किया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एज अमेंडेड इन 2026, जिसमें वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का विरोध करता है तो वो इस एक्ट का भी विरोध करता है। सो जब वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत है तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जानबूझकर इसका विरोध कर ये दिखा दिया कि वो फ्रिंज फोर्सेस के साथ में खड़े हैं। और जो फ्रिंज फोर्सेस के साथ में खड़ा होता है वो हमेशा इस बात पे गुस्सा होता है कि कोई भी उद्घोष जो भारत को आगे ले जाने की बात करता है उससे उसको विरोध होता है।
1: Pradeep Bhandari of the BJP there, you know, targeting Sonia Gandhi and Rahul Gandhi and the gestures that were made and saying that their heart doesn't bleed for the country and so on and so forth, while attacking them, including Mallikarjun Kharge, at what happened on Independence Day when, you know, the version of Vande Mataram that was sung, it was a full version that was not the norm during the Congress's regime. With that, we're slipping into a short break. Back with a whole lot more on the other side. Do stay with us.

0: अरे कांग्रेस पार्टी, भारत का ही उद्घोष हो रहा था, वंदे मातरम का ही उद्घोष हो रहा था, इतनी विपत्ति या इतना आक्रोश जब कांग्रेस पार्टी की रैलीज और कांग्रेस पार्टी के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे तब इनकी लीडरशिप को करते हुए नहीं देखा, पर जब कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा था तो सोनिया गांधी एजिटेटेड ही नहीं थी, गुस्से में ही नहीं थी, वो ऐसे प्रकट कर रही थी जैसे अपराध हो गया। द एक्शंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी पॉइंटेड टुवर्ड्स अ साइकी ऑफ अ दिमागी नक्सल इकोसिस्टम विच बिहेव्ड एज इफ अ क्रिमिनल एक्ट वॉज कंडक्टेड इन द कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स।
1: जब राष्ट्र गीत चल रहा हो और उस वक्त सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी और पूरी जो व्यवस्था वहां पर थी वो सुनियोजित तरीके से अपमान करने की ही नीयत दिखाई दे रही है उसमें, वो उनको शायद उसमें माँ दुर्गा का जो उल्लेख है वंदे मातरम में उससे उनके मन में एक पीड़ा है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही उन्होंने पूरा वंदे मातरम कभी इस देश में होने भी नहीं दिया, लेकिन जिस प्रकार का अपमान उन्होंने राष्ट्रगीत का किया है वो ये बताता है कि गांधी परिवार आज भी भारत माता से और भारत के जुड़े प्रतीकों के प्रति आज भी सम्मान करना वो सीख नहीं पाए।
2: ये देश सब जानता है कि कितनी अनकम्फर्टेबल हो रही थी जब वंदे मातरम हो रहा था और वंदे मातरम को रोकने की कोशिश हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण।
3: It's unfortunate. There should not be any controversy on Vande Mataram. It's our national song. The entire country has accepted it. Congress, even earlier Congress, that is Freedom Movement Congress, they also accepted it. And I feel unhappy and sad that on such occasions also unnecessary controversies are being raised. And then Vande Mataram also is being questioned also. And the government of India said it's a national anthem and it should be sung.
4: ये कोई मुद्दा है ही नहीं। 37 में आदरणीय हमारे जब बापू महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीत लिखा था उनके बीच में मध्यस्थता बातें हो गई थी और देश को सौंपा गया था कि केवल पहला लाइन जो पहला पंक्ति है वंदे मातरम का उसको गाना है। आज हमने उसको फॉलो किया जो हमारे महापुरुषों ने दी।
5: Right, let's just now switch tracks and get you more news that's coming in at the moment. And here we have, of course, let's just get you the latest. Moving on with more news at this point in time. So here we have Prime Minister Modi there and that peacock moment that we are showing on your screen at the moment. Modi's peacock moment. Modi, the Prime Minister and his feathered friends, peacocks visiting Prime Minister Modi this morning. A very special morning at that, and these moments that have been captured. Peacocks there bidding Prime Minister Modi a farewell, and that was a morning ritual, and we leave you with these visuals of the Prime Minister sharing that special morning ritual with his feathered friends. And he said feeding the peacocks is part of his daily routine, and yesterday they seemed to know he was leaving early for the Red Fort, turning up for him before he left.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा और प्योर मसाला।
4: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स,

0: लार्ज नंबर ऑफ मैलनरिश्ड चिल्ड्रन जो स्टंटेड होते हैं, वेस्टेड होते हैं. स्टंटिंग ऑफ कोर्स लाइफ लॉन्ग आपकी हाइट छोटी हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा है ये जो लोग सिवियरली वेस्टेड होते हैं उनका इम्यून स्टेटस पुअर होता है, डिजीज़ की ज़्यादा चांसेस होते हैं. एंड डेथ विथ सिवियर वेस्टिंग देर इज़ मोर रिस्क ऑफ डेथ. बट फॉर्चुनेटली अगर हम NFHS दैट्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखें, 5 जो 5 साल पुराना है और 6 जो रीसेंट है, कुपोषण कम हो गया है. स्टंटिंग एंड सिवियर मेरास्मस, सिवियर वेस्टिंग जो है वो कम हो गई है. लेकिन एक कैवियट है इसमें, एक इसमें छुपा हुआ राज है कि स्टार्वेशन इंडिसेस अभी भी कम नहीं हुए हैं. जब हम 6 महीने से 24 महीने, विच इज़ लाइक इन्फेंसी, उनकी डाइट देखते हैं तो वो डाइट पुअर है. उसका एक कारण है कि ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स कम आ गए हैं. हम उस मुद्दे पे जाएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स क्यों कम हो गए. बहुत सारे नेहा जी ने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किए हैं, कुछ अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और कुछ वैसे. लेकिन ये 6 महीने से 24 महीने तक जो पीरियड है, जैसे डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये 1000 डेज हैं, फर्स्ट 1000 डेज हैं, विच इज़ अ विंडो टू द ब्रेन डेवलपमेंट. सो ये बच्चे जो हैं जिनकी ब्रेन डेवलपमेंट, बिकॉज उन्हें खाना तो मिल रहा है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जिस तरह से मिलनी चाहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी या न्यूट्रिएंट रिच खाना जो है वो नहीं मिल रहा है, तो इनकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं अच्छी होगी. तो कुछ एक इंडिसेस, हेल्थ इंडिसेस जो हमें ये बताते हैं कि देर हैज़ बीन स्ट्रक्चरल डिवेलपमेंट. जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 90% चली गई हैं, इसका मतलब लोगों को फेथ हो गया कि अस्पताल में डिलीवरी करनी है, घर के अंधेरे कमरे में औरतें नहीं डिलीवर करती हैं. बच्चों को पहले 2 दिन पैदा होते ही देखा जाता है. न्यूनेटल मोर्टैलिटी नीचे आ गई है, इम्यूनाइजेशन रेट्स ऊपर चले गए हैं. लेकिन आई थिंक द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. एंड एक जो नारा हमने दिया कि इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, रीच ऑफ द हेल्थ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट. रीचिंग इंटरवेंशंस, लाइक हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं, इम्यूनाइजेशन एक इंटरवेंशन है. मैंने अचीव कर लिया 80%, 90%, लेकिन न्यूट्रिशन किसने देनी है? मदर ने. और मदर क्या है कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, छोटा बच्चा, तो चलो उसे दूध पिला दो, बट दूध कंप्लीट फूड नहीं है, पूर्ण आहार नहीं है. और क्या होता है कि विशेष सर्कल है कि बच्चा खाता नहीं है, उसे दूध दिया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, अनीमिया हो जाता है. और अनीमिया जो है एक बहुत बड़ा हर्डल है फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट. हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट मदर्स, इन्फेंट्स में इंसिडेंस ऑफ अनीमिया बहुत हाई है. अनफॉर्चुनेटली NFHS 6 में अनीमिया का डेटा अभी नहीं आया, लेकिन वो देखना बहुत ज़रूरी होगा. सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि कुपोषण की रोकथाम तो हुई है, हम उसे नीचे तो ले आए हैं, स्टंटिंग को नीचे ले आए हैं, लेकिन अगर आप बड़ा बारीकी से देखें तो अभी जो क्वालिटी ऑफ डाइट उस पीरियड में जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ब्रेन डेवलपमेंट होती है, अभी भी इनएडिक्वेट है. और क्या होता है कि अगर बच्चा ठीक से डेवलप नहीं होता है न्यूरोलॉजिकली या फिजिकली, देन दे आर नॉट प्रोडक्टिव टू द फैमिली, टू द कंट्री, एंड दैट्स अ लॉस फॉर द कंट्री.
1: डॉक्टर क्लेयर वेरी वेल
0: फोकस ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ दीज फर्स्ट 1000 डेज, विच इज अ विंडो टू द ब्रेन डेवलपमेंट. And this is very important for the families, for the individuals, for the communities to know. And for the breastfeeding, I would just add that, you know, we have to become very, very natural and comfortable about breastfeeding. You know,
2: yes, I can't agree. Sorry, I'm interrupting, but that's why normalizing it. It's just like, even when I was talking about it excessively, it's just like, क्या ज़रूरत क्या है बात करने की? I feel like अगर आवाज़ है, उठाओ. Use it in the right direction, and I feel like you also become a voice for multiple people. And the same way when they're looking at you, you're like, "Agar ye bol sakti, to main bhi bol sakti hu iske baare mein." And there was so much change that I've seen in the 9 years. I may have stopped feeding my kids, but there are so many conversations that
3: the conversation is happening, right? I mean,
2: yes,
3: that's important earlier
2: and highlighted in so many different ways. It's joyous. There are times when I wake up and you know, wo kehte na Instagram ya social media is like a vortex. It sucks you in.

0: of Rajasthan, there's so much of malnutrition. And the reason is that women don't have time to cook because wo jungle mein jaake lakdi chunti hain. Aur bachchon ko pata kya milta hai? Parle ji aur kurkure aur chips. So it's the choice of the, kyunki micronutrient deficiency, which is anemia, I'll again and again hamper, because that's very important for the brain development. Agar aap hari sabziyan nahi khate hain, chawal, aata, dal ki koi kami nahi hoti hai, lekin hari sabzi ki kami hoti hai kitchen. Hari sabzi banane ki kami hoti hai. Even people who are affluent, ghar pe khana bhool gaye hain, they eat more often outside. And many a time the choices are unhealthy. So I think right from beginning, the right choices,
1: yeah,
0: that's very important. Then hygiene. Hygiene including your personal hygiene or your toilet hygiene. बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शुरू से बच्चों को स्कूल से ही सिखानी चाहिए कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना है. इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल इनिशिएटिव बाई द स्कूल प्रोग्राम्स ऑफ स्वच्छ बनेगा भारत. सो बिकॉज यू नो इफ यू पुट समथिंग इन अ चाइल्ड्स माइंड विल नेवर फॉरगेट. अनदर थिंग विच हैज हैपन्ड विच इज गोइंग टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन इज द एजुकेशन ऑफ द मदर.
1: Yes.
0: Enabling them to be more digital friendly. One thing which has come up in NFHS 6 is that the number of women who are internet friendly has increased. Women who have independent, their bank account has increased. So like the social securities and the welfare schemes, they come straight to the mother.
1: Yeah, which actually...
0: So there are no patriarchal gatekeepers.
1: I think an important point here, of course, we're talking about, you know, whether it's mothers, fathers, all of us play a critical role in bringing out good children, future citizens of our country. Lekin ab hum diarrhea ki baat kare, to chahe diarrhea ho ya COVID jaise challenges, I want to here put out ek aisa network hai jo har din ladta hai, jo hamari ASHA workers hain.
2: Wo ek healthy India ke soldiers hain. Aaj hum unse milenge, unke kids dekhenge aur samjhenge ki unhone apne gaon mein kya badlaav laaye.
1: So if you can please have the ASHA workers join us here today. I think, please aaiye ma'am. So Ravi, humne dekha hai, we've all seen, I think during COVID, the critical role they've played. And not just, I think, COVID, the World Health Organization has also felicitated them and seen the kind of work. They really are the thread to ensure that community healthcare reaches these ASHA workers. In fact, ma'am, aapse kuch charcha karna chahenge. If you can share with all of us, aap jo kaam ground par karte hain, घर घर जाके उस काम के बारे हम सबको जरा बताइए.
3: ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू NDTV एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कॉलिंग अस हियर. आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड. थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. हम लोग BMC से हम लोग एज अ हेल्थ वर्कर हम लोग काम करते हैं आशा वर्कर के तौर पे. आई एम वर्किंग सिंस 12 ईयर्स इन द BMC. वी आर वर्किंग लेवल स्लम्स में हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं. हम लोग चाइल्ड एंड वीमेन जो होते हैं उनके हेल्थ के लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशंस हो गए. देन मैम ने जैसे बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है तो उनके उन्हें हम लोग बहुत सारे मतलब फर्स्ट विजिट से लेके उनके एंड तक जितना उनका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन रहता है तब तक हम उनको बहुत सारे सलाह देते हैं, बहुत सारे उनके जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं, बहुत सी चीज़ें रहती है लाइक प्रेगनेंसी से लेके बच्चा कंसीव होने से डिलीवरी तक जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग उनको. मैम ने जैसे बताया ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, ये इम्पोर्टेंस हम लोग उनको समझाते हैं. और बच्चों में मैल न्यूट्रिशन ना हो इसके लिए हम लोग उनको हेल्थ टॉक वगैरह देते हैं. और बहुत सारी जैसे अभी बारिश का मौसम है तो सीजनल जब होते हैं सीजन बारिश का मौसम होता है तो बारिश में बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, तब हम लोग बहुत एक्टिवली हम लोग काम करते हैं उसमें भी बारिश में भी. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि अभी पोलियो रिसेंटली पोलियो है तो आशा वर्कर्स एंड जो उसकी CHVs है कम्युनिटी हेल्थ वॉलेंटियर्स उनकी वजह से आज हम वी कैन से प्राउडली कि हमारी वजह से आज भारत पोलियो मुक्त होने जा रहा है या फिर हो रहा है.
1: थिंक वी नीड टू या
3: सो आई एम वेरी
1: आई थिंक नहीं आप कह सकते हैं. आई मीन आई थिंक नहीं आई मीन यू कैन डेफिनेटली से दैट. हमने देखा कि जितना काम जो हमारे पूरे देश में ये आर्मी ऑफ आशा वर्कर्स हमने कह सकते हैं सोल्जर्स ऑफ आशा वर्कर्स है. इनफैक्ट द सैनिटेशन वर्कर्स हैव ऑल्सो प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल. और इंडिपेंडेंस डे में वी डोंट हैव अ सैनिटेशन वर्कर अनफॉर्चुनेटली जॉइनिंग अस बट दे बीन पार्ट ऑफ अवर कैंपेन. दे हैव प्लेड अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल. इनफैक्ट
3: वी डू सो मैन ही डिड अ
1: बट चैलेंजेस क्या आते हैं?

0: हैं आपके?
1: चैलेंजेस में बहुत सारे होते हैं, लाइक समटाइम्स पीपल जो होते हैं हमें रिस्पॉन्स अच्छे से करते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं जो सीधा विदाउट आस्किंग एनीथिंग उनको लगता है कि हम लोग कुछ सेल करने के लिए है तो सीधा दरवाजा मुंह पे बंद कर देते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं हम फेस करते हैं, बट वी डोंट बॉदर अबाउट इट. हमें हम घर से यही सोच के निकलते कि नहीं हम आज हमें कुछ करना है, हम सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं एंड हमें करना है, दैट्स इट. हम बाकी की जो चीजें हमें रुकावट देती है उनको हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं. बहुत सारी चीजें होती है हमारे काम में, जैसे बहुत सारा वर्क प्रेशर भी होता है कि एक काम करते तब दूसरा कॉल आ जाता है कि आपको ये भी करना है साथ में. अभी बारिश का मौसम है तो बहुत वाटर लॉगिंग वगैरह हो रहा है तो उसमें लोग जाते हैं, तो उनके प्रिवेंशन के लिए उनको लेप्टोस्पायरोसिस या ऐसी कुछ बीमारी ना हो तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हम लोग उनको डॉक्सी की मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते, तो हमें फिलहाल हम लोग ये कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, चैलेंजेस भी बहुत आते हैं बट हम ज्यादा उनको भी इतना बॉदर
0: आप बॉदर नहीं करते, आप बढ़ते ही चले जाते हैं. आई मीन फ्रॉम NDTV डिटॉल, हम सबकी तरफ से आज यहाँ जो बैठे हैं, वी हैव गॉट पद्मभूषण, पद्मश्री, वी हैव गॉट नेहा, आयुष्मान एंड रवि जो ग्राउंड पर काम करते हैं. थैंक यू, हम यू नो दिल से आपको धन्यवाद करना चाहेंगे,
2: बट बिफोर वी एंड दिस सेगमेंट
0: करना चाहेंगे, right?
2: आज हम इंडिपेंडेंस डे पर हमारे हीरोज को एक स्पेशल पिन देंगे, बनेगा स्वस्थ इंडिया ऑनर्स, ऑल द आशा वर्कर्स विल बी गेटिंग दैट पिन, द स्वस्थ आजादी पिन, ये उनकी कंट्रीब्यूशन का सल्यूट है. लेट्स वेट फॉर
0: आज pin. हमारे साथ यहाँ पे चार आशा वर्कर्स है बट हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे दिस इज फॉर All the ASHA workers, in fact, are working tirelessly in our country. Can we please have the pins? And can I please request you all to please pin them? I can think we can start with you, Dr. Clive. You can pin our first worker. And Sai Damodan ji, aap bhi aaiye. And I will, I think, start with please.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न, इंडिया इज चेजिंग गियर्स फास्टर, बोल्डर, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal.
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
6: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV.

0: A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Sishir Khanal, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, Actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, Commerce, Security, Infrastructure, Tourism, Soft Power. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
1: Your Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
2: 21 days in Kashmir. People have bombarded me, friends, with requests for an unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
3: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
2: They're now India's smallest but possibly the most powerful crime family. Cough syrup has killed at least 25 children. Dicoid sahab, aise mat kijiye. Suddenly, people are wondering about the weaponization of India-Pakistan cricket. We live and breathe elections. You will not believe your eyes or ears when I show you what I'm about to do.
4: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
2: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
3: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
0: A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
5: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
6: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% Suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand. Her rose.
0: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
7: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
7: It's incredible.
0: He has seen history break. Live.
8: Welcome back. आप देख रहे हैं सीजन 12 फिनाले एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन का ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है लेकिन नाउ इट्स टाइम टू स्विच गियर्स थोड़ा फन थोड़ी मस्ती एंड थोड़ा सा नॉलेज क्योंकि आज हमारे साथ है आयुष्मान जो क्रिएटिव भी है थॉटफुल भी हैं रोडीज के विनर भी रह चुके हैं और दूसरी तरफ है नेहा धूपिया रोडीज से लेकर रियल लाइफ तक मुझे पता है दोनों बहुत कंपेटिटिव है सो आई ऑल रेडी फॉर दिस तो हमने सोचा व्हाई नॉट टेस्ट कौन ज्यादा जानकार है हेल्थ और सैनिटेशन पर दिस इज अ बजर राउंड वेयर वी हैव अ क्विक फायर यू नो रैपिड फायर क्वेश्चंस ऑन हेल्थ हाइजीन एज वेल एज एनवायरमेंट सो आयुष्मान एंड नेहा यू गाइस रेडी दोनों के साथ आप देख सकते हैं हमारे पास तीन छोटे छोटे बच्चे हैं आई मे बी थिंकिंग छोटे देखते कितने नॉलेजेबल हैं दे आर यंग चैंप्स ऑन ईच साइड सिंपल रूल्स सवाल होगा हेल्थ और हाइजीन से जुड़े और आपको बजर दबाना है द मिनट यू ऑल नो द आंसर रेडी Ready for it?
9: Ready guys, say yes.
8: बच्चे आप ready हो? Thumbs up? Okay, पहला सवाल, कौन सी habit illness से बचने में आपको help करती है? Soap और, अरे सुन तो लो पहले, दोनों का बैठे
10: में. But illness से बचने के लिए हम...
8: Answer, सुनो तो सही. Soap और पानी से हाथ धोना, meal skip करना, toothbrush, क्या था?
9: ये बच नहीं रहे.
10: Soap और पानी से हाथ धोना.
8: Okay, that goes to her.
9: But ये बचे तो सही ना?
8: ओके ये कैसे बजर फिर से टेस्ट करिए मैं
10: वो
8: आयुष्मान cheating, one point gone.
10: Buzzer कैसे लगाते हैं? Left hand side.
8: Okay, पहला point.
10: में या बहाने मार के?
8: Okay, पहला point. यहाँ का. आयुष्मान. Ready for the next one. हाथ कब धोने चाहिए? खाने से पहले और टॉयलेट के बाद?
9: यार. मैं आंसर दे दूँ.
10: Before and after eating.
8: Okay, so.
9: अरे यार. No, no. नहीं रहा है.
8: बच्चे आप ट्राई करना बजर, शायद आयुष्मान का हाथ उनको अच्छा
9: नहीं है।
8: नहीं शायद ना, आप दबाना ठीक है बच्चे। ओके तो नेहा इज टू, आयुष्मान इज येट टू, खाता शुरू होना बाकी है। तीसरा सवाल है, हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए?
9: 20 seconds.
8: ओके आयुष्मान का था।
9: लिसन कम ऑन,
8: ये तो ही इज कैंपेन एम्बेसडर, ये तो पता।
9: अच्छे बच्चों की तरह बजर दो बार दबा चुका, आंसर भी मुझे पता था।
8: ओके
10: उससे ज्यादा तो उनके बजर दबाने में लगता है 20 seconds.
8: ओके चौथा सवाल, कौन सी चीज ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचाती है? ऑप्शन सुन लीजिए, क्या आंसर है बताइए। अनयूज्ड अप्लायंसेस स्विच ऑफ करना, सब कुछ को ऑन रखना, फ्रिज बार बार खोलना।
9: अनयूज्ड अप्लायंसेस स्विच ऑफ करना,
10: टाई,
9: पर बजर नहीं दब रहा हमारा।
8: ओके दिस इज अ टाई, फेयर एनफ,
10: क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं और अप्लायंसेस नहीं दबा रहे हैं, तो ये पॉइंट भी उनको दे दीजिए।
9: चलो चलो
8: टू ऑल,
9: थैंक यू।
8: पांचवा सवाल, एनवायरमेंट के लिए कौन सा बैग बेटर है? रीयूजेबल क्लॉथ बैग, सिंगल यूज प्लास्टिक, कि हर बार नया पेपर बैग?
9: रीयूज, आंसर देने दो यार। हाँ, नेहा
8: नेहा इनको बोलने दीजिए।
10: रीयूज,
9: रीयूजेबल।
8: माइक उठा के बोलो,
9: माइक उठा के।
8: रीयूज, रीयूजेबल बैग। ओके सो 3, 2, 6 क्वेश्चन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। बच्चों ये आपको जीतना पड़ेगा, ये वाला सवाल
9: पहले ही दबा के बैठी है औरत।
8: ये मैंने पहले ही बोला था कि बहुत
10: कुछ आपके ऑप्शन से मेरे को आंसर पता चल जाएगा ना।
8: शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चे? बाइसिकल, कार, मोटरसाइकिल?
10: बोलते दिया, हो गया रिकॉर्ड, हो भी क्या, हमारा आंसर रिकॉर्ड हो गया। आप अगले सीजन में आइएगा बजर दबाने।
9: हमारा बजर खराब है, ये चेंज करो यार।
8: आयुष्मान समथिंग रॉन्ग विद योर आईज,
10: इन्होंने हाथ नहीं धोए ना, वो बजर बहुत जरूरी है। मैं हाथ
8: मैं दो बार चेक कर रही हूँ, चल रहा है। ओके
9: थैंक यू, ये तो चल रहा है।
8: नहीं वो भी चल रहा
10: है, राइट वाला हाथ धोया है ना।
8: नेक्स्ट सवाल गाइस, कम ऑन, नेक्स्ट सवाल। नेहा 4, आयुष्मान 2। बच्चों आपको नेक्स्ट वन लेना पड़ेगा। प्लास्टिक बॉटल्स का क्या करना चाहिए?
9: रिसाइकल करना चाहिए प्लास्टिक बॉटल्स।
10: ये पसंद नहीं था ब्राव,
9: दिस इज कर्मा
8: गाइस,
9: और उड़ाओ मजाक।
8: दैट्स द फन ऑफ दिस, दैट्स द फन ऑफ दिस। 3 and 4, ब्रशिंग के वक्त पानी कैसे बचाना चाहिए? ऑप्शन पीछे है, देखिए पानी कैसे बचाना चाहिए। टैप बंद करना चाहिए, टैप चलता छोड़ देना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी
10: बंद करना चाहिए।
9: यार
8: टैप बंद करना चाहिए,
10: आप बोलिए, ये मेरा ही कुछ
8: आके बोलिए। नो ही शी सेड इट,
10: टैप सेड
8: इट बिफोर।
9: इतना फोमो ठीक
11: नहीं है यार, करना चाहिए।
10: वेरी गुड, क्या सवाल, आंसर जवाब दिए क्या? वाह
8: वेरी गुड बच्चे, आपका नाम?
12: इशिता।
8: सो इशिता गॉट इट राइट।
10: किस स्कूल से आप?
12: प्रभा देवी।
10: क्या बात है।
8: ओके वेस्ट कम करने के लिए क्या करना चाहिए? आप पीछे ऑप्शंस भी देख सकते हैं।
10: दे दिया, दे दे दे दिया,
8: बताइए।
10: दिया मैंने बजर दबा दिया।
8: रीयूज और
9: रिसाइकल, बात बताओ ये इस साइड में प्रॉब्लम है, यहाँ बजर दबे।
10: रीयूज रिसाइकल,
8: ये सब
10: आप बताइए, आप बताइए, आप जो मैंने बोला वो बोल दे।
9: इनको भी चांस दो बोलने का, हमारे बच्चों को।
10: हाँ बोलिए जोर से।
12: रीयूज रिसाइकल,
10: क्या बात है,
8: रिसाइकल करना चाहिए। ओके नेक्स्ट वन आपको आंसर करना है, ये जो आपका नाम बताओ। He's all excited, Ayushman. You need to make sure you press the buzzer before I finish the question.
9: Yeah.
8: Planet के लिए कौन सा better है? Press it.
10: आपने दबा दिया, आपने दबा दिया। बता दो बाबा। आपने नहीं बोला ना, आप बोल दो। अपनी water bottle carry करना बोल दो।
12: अपनी water bottle carry करना।
10: 11 points.
9: Can I change my hand, guys?
10: I want to say, Ayushman को बरस दबाने के लिए क्या करना चाहिए?
9: I don't know, yeah.
8: I think आपको एक बार हाथ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम सबकी, सिर्फ गवर्नमेंट की या एनवायरमेंट ग्रुप्स की?
9: सबकी, दो बताओ।
8: सी बच्चों से भी दब गया मेरी, दैट्स आई थिंक अ ग्रेट आंसर। हम सबकी, he stands for I think the youth of our country.
10: Yes.
8: बोला मेरी, हम सबके लिए। Well, that was a fun game. और ऑफ कोर्स नेहा जीती है, सिर्फ एक गेम नहीं था नेहा
11: तो जीते
8: नहीं, आयुष्मान और नेहा ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि हेल्थ और हाइजीन की बेसिक बातें हमें सेफ रखती हैं, एंड आई थिंक आवर किड्स आल्सो नो दैट, और डिजीजेस से हमें आज़ाद रखती हैं. थैंक यू सो मच बच्चे, आप आए हमारे साथ खेलने, आप इनफैक्ट विनर्स हैं, पर आप भी विनर्स हैं बिकॉज आई थिंक यू नो व्हाट ही सेड कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट एज टू रियलाइज इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अ क्लीनर एंड हेल्दियर इंडिया. थैंक यू सो मच बच्चे, आप हमारे साथ जुड़े.
9: थैंक यू बॉयज,
10: थैंक यू गाइज, यू आर अमेजिंग. आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, जो सब बच्चे हमें देख रहे हैं, जो सब माँ बाप देख रहे हैं, रियली वेल डन.
8: या एंड आई थिंक यू नो ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस इट्स नॉट जस्ट अबाउट फास्टर्स फिंगर फर्स्ट, जैसे आयुष्मान का तो खैर बजर उनसे नहीं दब रहा था, हम सबसे दब रहा था, लेकिन इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ इन्फॉर्म्ड आवर फ्यूचर जनरेशन इज, किड्स ऑफ आवर कंट्रीज, इनको पता है क्या उनके लिए सही और क्या नहीं है. Well, thank you all so much. We'll take a really short break. But when we come back, we're going to be having this conversation even more in detail and lots of fun with our kids today. Thank you so much.

1947 में हमें आज़ादी मिली थी। कई लोगों ने अपना आज हमारे कल के नाम कर दिया था। अब 2047 भी दूर नहीं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम कौन सी आज़ादी छोड़कर जा रहे हैं। खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी या मास्क से समझौता कर लेने की, साफ पानी पीने की आज़ादी या हर बूंद को परखने की, सेहत को आदत बना लेने की आज़ादी या इलाज को ज़रूरत बना देने की, बच्चों के हाथ मिट्टी से रंगे होने की या हर चीज़ को छूने से पहले सैनिटाइजर यूज़ करने की, अपने बच्चों को उम्मीद देने की आज़ादी या उनसे माफ़ी मांगने की, आखिर हम कौन सी आज़ादी छोड़ कर जा रहे हैं। नदियों को बहते देखने की या सिर्फ किताबों में उनकी तस्वीरें देखने की, पेड़ों की छांव में बैठने की या एयर प्यूरिफायर के आसपास जीने की, सुबह चिड़ियों की आवाज़ से खुलने की या एम्बुलेंस के सायरनों से, खुले हाथों से लोगों से गले मिलने की आज़ादी या हर लम्हे किसी वायरस से डरते रहने की, अपने बच्चों को सिर्फ जिंदा देखने की आज़ादी या उन्हें सेहतमंद देखने की, आखिर हम कौन सी आज़ादी छोड़ कर जा रहे हैं। क्योंकि आज़ादी सिर्फ सरहदों पर नहीं बचाई जाती, वो बचती है घरों में, आदतों में, उस हाथ में जो अपने आप को साफ रखता है ताकि किसी और को प्रोटेक्ट कर सके, उस नल में जो वक्त पर बंद हो जाता है, उस पेड़ में जिसे काटने से पहले कोई एक बार सोच लेता है।

0: And that too, like, you know, people are trying like seed bombing, using drone, etc., etc. We thought we have grown up with pencils and erasers.
1: Yes.
0: We started with the pencils, the seed pencils. As soon as the pencils end, you just plant that pencil of this seed into the school, and now in 2, 3 years, it has now grown up. So there's a natural flora and fauna. The state bird of Uttarakhand is Monal. We have seen in Uttarakhand, in Uttarkashi especially, the Monals have started coming back to the schools. It's not
1: Wow.
0: me saying, it's the bird
1: That's
0: watchers they are
1: amazing.
0: saying. And this gives us a lot of hope also. And we also see something which is very contradictory. When a peacock was found at the highest peaks in Uttarakhand, which makes us very disturbing, because that's not the phenomena. It's same like, you know, someone was spotting hornbills in Delhi in one of the parks few days back,
1: Yes,
0: and
1: yes.
0: saw a colored hornbill there.
1: Yes.
0: Otherwise, Delhi has one nesting, totally one nesting,
2: Yeah.
0: which has a gray hornbill. So it's an intersection of basically, you know, the animals, humans, and planet. And it's very interesting, like, how the whole work is coming up. And we are going to put something together with the AIIMS Rishikesh, which may be a center of excellence on hygiene, health, and climate, which we will bring to the audience when we meet again on 2nd of October.
2: You know, in fact, what Priya, Ayushman, what Ravi just shared, I witnessed it during the launch. So, you know, the pencils and, you know, the kind of retrofittings which have been done in the schools. And I visited the schools. And, you know, when I met the kids recently again, you know, what all they've learned. And especially in a place like Uttarakhand, which is so, I mean, vulnerable when it comes to climate, you're hearing of landslides. And aapne bachcho ki baat ki, as a
3: I'm
2: mother.
3: From Uttarakhand, by the way.
1: You're
3: I'm from Dehradun.
2: So you can totally like.
3: So I can totally relate to everything you're saying. And, you know, when we were growing up in the 90s, Dehradun used to be this very beautiful city. You know, I've grown up with trees. We used to walk on the roads. And jo jo aap keh rahe, you know, ped, chhaya, sab kuch main aise hi wahan pe badi hui hu. Now, when I go back, it's a different city. So I'm so glad that that work has started, specifically from a place like Uttarakhand, which is one of the most beautiful states we have out there. So thank you for doing what you're doing.
1: I wish sparrows come back to Chandigarh.
3: Yeah.
1: जब मैं छोटा था
2: इतने
1: तो स्पैरोज इतने होते थे चंडीगढ़ में. माई चाइल्ड वॉज फुल ऑफ स्पैरोज, बट दे आर नॉट देयर एनी मोर बिकॉज सेल रेडिएशंस और वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. बट व्हाट यू डूइंग इज ट्रूली कमेंडेबल. सबसे अच्छी बात लगी कि आपने जूनियर RJs जो इंट्रोड्यूस किए हैं, गिवन द माइक एंड द अपॉर्चुनिटी टू द यंग किड्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. एक कलाकार का एक अंदर से रूह होती है कि आप कुछ बदलाव के लिए कुछ किया जाए, जैसे मैं और हम प्रिया के साथ डिस्कस कर रहे थे. या हाँ, सो प्रिया, आप एक मॉम भी हैं. बच्चों के बाद आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है. क्लाइमेट चेंज सडनली पर्सनल फील होने लगता है. यू हैड मेंशन दैट बिफोर. आई थिंक आप दोबारा कहना चाहेंगे उसके बारे में.
3: यस, क्योंकि जब हम पहले बात करते थे कभी भी, मेरे और मेरे हस्बैंड और मैं कहती थी यार, यू नो, आई ऑलवेज वांट टू बी अ मॉम, एंड करण यूज्ड टू बी लाइक, ग्लोबल वार्मिंग का जमाना, आई एम श्योर यू ऑल हर्ड दैट, राइट? लाइक, व्हाट वर्ल्ड आर वी ब्रिंगिंग आवर चिल्ड्रन इन? एंड आई थिंक दैट क्वेश्चन डिड नॉट हिट मी बिफोर आई बिकेम अ मॉम. आई वॉज लिविंग दिस आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, सेइंग हाँ, सब ठीक है, सबके बच्चे हो रहे हैं, हम भी कर लेते हैं. बट नाउ व्हेन माई सन वॉज बोर्न, आई हैव स्टार्टेड फीलिंग वेरी डिफरेंटली अबाउट द एनवायरमेंट. यू नो, एवरीथिंग, वेदर इट इज द एयर क्वालिटी, वेदर इट इज सिंपल थिंग्स अराउंड आवर हाउस. वी मूव्ड होम्स आफ्टर माई सन वॉज बोर्न, बिकॉज आई वॉन्टेड हिम टू बी ब्रॉट अप अगेंस्ट इन द मिडस्ट ऑफ ट्रीज, जो बॉम्बे में आपको नहीं मिलता. हमने स्पेशली ऐसा घर ढूंढा जहाँ आस पास पेड़ हो, जहाँ उसके पास बैकयार्ड हो, जहाँ वो पौधे लगा सके, पौधों के बारे में सीख सके. एंड आई थिंक ये डिफरेंसेज आ जाते हैं वैन यू बिकम अ पेरेंट. यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग नेचर, बिकॉज हैविंग अ चाइल्ड इज सच एन एनवायरमेंट thing in itself as well. So yes, that has definitely been a change.
2: And then you're more conscious and mindful about all the decisions you take as parents. You know, I think we're all parents, but specifically for y'all as artists and as individuals, of course, this planet is something, I think, Ravi, you'll also agree, we need to share with our next generation. Aapne pehle bhi baat ki thi, as a parent, you know what we feel. I want to ask you both, Priya and Ayushman, I would request you, if you would like to share a few lines on protecting our earth for the future, agar aap kuch share karna chahenge apne zehen se, environment ke liye.
3: आई थिंक यही सवाल हमेशा जहन में आता है कि हम कौन सी आज़ादी छोड़कर जा रहे हैं. यू नो, साफ़ पानी पीने की आज़ादी, साफ़ हवा की आज़ादी, वो आज़ादी जो वो सचमुच में महसूस कर सकें. तो हमेशा मेरे जहन में यही सवाल आता है कि मैं क्या विरासत में दे रही हूँ अपने बच्चों को. एंड दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट हैज़

0: always stayed with me as a parent.
1: So that leaves a thought, I think.
2: एक मैं इस पे लिखा था मैंने कुछ सेहत मेहनत हुनर और अदा सेहत मेहनत हुनर और अदा और आखिर में उसकी रजा सबसे पहले लेकिन सेहत आती है आपके हुनर से पहले आपकी मेहनत से पहले और आपकी स्टाइल या अदा से पहले और आई थिंक सेहत से ऊपर कुछ नहीं है जब तक आप एक हेल्दियर एनवायरनमेंट नहीं देंगे फ्यूचर जनरेशंस को तब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर नॉट इवन बिकमिंग पेरेंट्स बिकॉज ऑफ दैट कि हम किस शहर में रह रहे हैं कैसी जगह में रह रहे हैं AQI यहाँ इतना बढ़ गया है सो दे आर चूजिंग नॉट टू बिकम पेरेंट्स बिकॉज ऑफ दिस हम इस हालात में पहुँच चुके हैं सो आई थिंक इट्स वेरी इंपेरेटिव दैट वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस एंड स्टार्ट्स नाउ
1: और आपने जो बात कही सेहत की राइट रवि दैट्स व्हाट आवर कैंपेन हैज बीन टॉकिंग क्योंकि हमने रियलाइज किया स्वच्छता जरूर है जरूरत है लेकिन किस तरह सेहत से कनेक्टेड है तभी ये कैंपेन हमें जो 12वें साल में है तभी बनेगा स्वस्थ इंडिया राइट
3: अंबिका आई वांट टू ऐड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एज दिस इज अ बिग जर्नी ऑफ 12 इयर्स यू नो लाइक जीवा इज वन ऑफ आवर वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स व्हिच इज ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस And you have been interviewing Swamiji from last many years in Rishikesh. Muniji, he's fondly called at Paramarth Ashram. It was, first conversation with him where he said, like, can we have the crematoriums which are wood-free? Can we
1: wood-free?
3: Wood-free crematoriums.
2: Okay, yeah.
3: And... I asked him like, okay, तो फिर ashes का क्या करेंगे? कि he told like इसमें तो nitrogen भी है, इसमें तो phosphate भी है. So जो हमारे जब parents या जो भी हमारा love वो नहीं रहते, then you know आप पेड़ लगाइए और उसी यही जो जो last जो remains जो आपका बचता है ना, जो ashes हैं, उसी को उसके अंदर आप डालिए ताकि वो और उसको अपना नाम दे दीजिए कि किसकी memory में आप लगा रहे हैं. I thought like कि ये सच में होता है क्या स्वामी जी? He said, I can show it to you. I said, ठीक है, देखने चलते हैं. And he took me to the places. And we saw it firsthand ourselves. We thought like, you know, if this is one of the things like, you know, अपने जिसको आप प्यार करते हैं उसके नाम पे आप पेड़ लगाते हैं, that remains forever. यही concept जब हम बच्चों के पास लेके गए in a very different way, the first initial question was like, you know, क्या पेड़ों में जान होती है? You know, There's a particular way how science is taught to us. There's a process of photosynthesis, you know, etc. So it was very interesting for us to actually make kids see how actually trees breathe, how they are connected. There is a very young lad. She's studying in Stanford University. She's in her third year now. And she created something called Kiara Kits for us. We took those kits to the kids so that all these experiments where you can actually see like, you know, the plants actually live, they breathe. And it's not just a textbook subject.
1: Yeah.
3: So we could do that. We could demonstrate that. And I would also like to put on record, Government of India has put some very fabulous infrastructure, especially to learn. So like you have the Forest Research Institute in Dehradun. FRI is there. So we went to the schools. We work in around 1300 schools across Uttarakhand right now. We asked the kids, have you heard about it? No. We asked teachers, do you know about it? Some of them said yes, but never visited. We thought like, have you ever seen the flora and fauna which is there? Have you seen a tree which is 200 years old, which has, you know, the various circles, each circle actually telling you a story?
2: Yep.
3: You have more than 300 varieties of butterflies there in that place.
1: Yep.
3: So we could bring the kids near to the nature at the FRI to give them the science-based education and then taking them back to their schools and to their societies and to the forest to do the nature walks. So that they journalize it, what they have seen in the FRI and, you know, they can connect and relate back.
2: And that's the beauty of our culture. Because sometimes we can change our traditions, our norms according to what's happening around. And we call Mother Nature, Dharti ko maa kaha jata hai. Aur jo maa ke hit mein sahi hai, wo hona hi chahiye, jaise Swami Ji ki baat ki. And there was this place in Jyotisar, jahan par wo purana ped hai, jahan par Krishna ne Arjun ko updesh diya tha. It's like hundreds and hundreds of years old. To our school trip was there. So ऐसे trips और होने भी चाहिए. So we'll now let's
1: experiential learning. Yeah. Yeah. होता है.

0: What are your thoughts on something like this where the kids...
1: This is the best part. I think last time we yehi kiya tha, bachchon ko saath mein ekatrit karke, kuch aisa kiya tha, jisse wo seekh sake.
0: Ji.
1: और अपने हैंड्स को हमने वहाँ पे किया था एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ द एक्टिविटी
0: कलर जो हमने
2: यस वी प्लेड विद द ब्रिक्स
1: यस
2: वी डिड द हॉपस्कॉच टुगेदर
1: एब्सोल्युटली तो ये एंड इससे कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे कुछ सीख भी सके और खेल भी सके एंड ऑल दीज मैसेजेस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट और आज़ादी का मतलब यही होता है कि सिर्फ हम अपने देश से प्यार करना तो हर कोई करता है देश के लिए कर क्या रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है और बच्चे अगर सीख जाएं तो आगे जाकर देश के लिए बहुत कुछ हो सकता है
0: एक्चुअली छोटी छोटी चीजें दिस मे बी अ स्मॉल थिंग बट लाइक यू राइटली सेड बच्चे ही हमारा फ्यूचर है
1: एब्सोल्युटली आज के दिन पर हम अक्सर आज़ादी को याद करते हैं बिकॉज इट्स 15th August बट रियल फ्रीडम सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं होती असली आज़ादी तब होती है जब हम अपने देश को डिजीज फ्री और सैनिटेशन स्ट्रॉन्ग बना पाए
0: और जब हम एक ऐसा भारत बनाते हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे

0: जो रिजिलियंट हो, तभी हम आजादी को ट्रूली लिव करते हैं एवरी सिंगल डे।
1: बनेगा स्वस्थ इंडिया, बनेगा स्वच्छ भारत, और तभी बनेगा एक सच में स्वतंत्र भारत।

मातरम में, उससे उनके मन में एक पीड़ा है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही उन्होंने पूरा वंदे मातरम कभी इस देश में होने भी नहीं दिया, लेकिन जिस प्रकार का अपमान उन्होंने राष्ट्रगीत का किया है वो ये बताता है कि गांधी

0: guys, so for Independence Day, let's go around asking people what their favorite Independence Day memories are and what they think of living in Bharat. What is your most cherished or most favorite Independence Day memory?
1: जब हम छोटे थे, मैं ऐसे ही बताऊं, पहले बड़ा क्रेज होता था पतंग उड़ाने का.
2: When I was in school, we used to get laddus and we used to hoist flag.
3: Independence Day पे जो हम ये kites वगैरह जो हम ये उड़ाते हैं, तो अभी इस सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं. बट तो हमें ये बचपन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, तो यही सारी मेमोरीज हम मिस करते.
0: देश से बाहर जाते हैं आप, ट्रैवल करते हैं, तो आपको इंडिया की याद सबसे क्या आती है?
2: इंडियंस एंड इंडियन फूड.
1: इस देश की मिट्टी में ऐसा जुनून है कि लोग बाहर जाके भी अपने देश को याद रखते हैं और अपने देश के लिए उनकी आंखों में आंसू आते हैं वापस आने के लिए.
0: माय गॉड, क्राइंग हियरिंग यू. या पर अभी आज कोई बच्चे सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहते हैं अपने देश के बारे में सोचने के लिए?
4: इंडिया के बारे में सीखे हैं, कल्चर के बारे में सीखे कि हमारे में कितने नॉर्थ ईस्ट के कितने स्टेट्स हैं.
1: मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने देश के इतने महत्वपूर्ण डे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है ये, उसको अपने बच्चों के साथ इतिहास में उनको बताया जाए कि पहले आज से 80 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ हमारे देश की क्या हालत थी और हमने इन 80 सालों में क्या किया है.
2: इंडिया इज़ अ होम, इट्स अ सोल.
0: हाउ कैन वी नॉट एंड द डे विद छोले भटूरे, मोमोज, खीर एंड लस्सी व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे? सो इफ यू आर हियर टुडे, मेक श्योर यू आउट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, मेक अ होल डे आउट ऑफ इट एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे.
5: जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया.
6: Well, that's all from me. For all the latest updates from India and around the world, keep watching NDTV. And remember, don't be afraid to be in the limelight. With camera person Ritvik Gugnani, this is Mayank Chaudhary. See you next weekend.

0: नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर झेलम की कलकलाहट मुझे सुनाई दे रही है। मेरे ठीक सामने पीओके के पहाड़ हैं और जिस ज़मीन पर मैं खड़ी हूँ, ये गेटवे ऑफ कश्मीर भारत के नक्शे पर उरी, जो साहस, बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। पाकिस्तान के साथ जो चार युद्ध हुए हैं, उन चार युद्धों में इस ज़मीन का अपना एक अलग महत्व है और इसीलिए हमें लगा, क्योंकि यहाँ पर जवानों की अग्नि परीक्षा भी होती है, विजय का जश्न भी होता है, तो आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए इससे बेहतर जगह और इससे बेहतर साथ क्या हो सकता है। तो आज जवानों के बीच हमारे साथ पटौदी के नवाब हैं, दिलों के सरताज हैं और सिनेमा की दुनिया के सुपरस्टार हैं, सैफ अली खान। मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका।
1: नमस्कार मीनाक्षी जी।
0: नमस्ते,
1: थैंक यू,
0: वेलकम।
1: नो नवाब प्लीज, सिंपली एन एक्टर।
0: चलिए, लेकिन आज रील की दुनिया से आगे निकल कर रियल लाइफ में आप पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं, जहाँ से हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं।
1: नो, मैंने फिल्में की हैं पास में, हमने एलओसी कारगिल की फिल्म भी की थी और बॉर्डर के काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन इतना करीब कभी पहले नहीं आया।
0: आज का दिन सैफ अली खान से आगे निकलकर जवान बनकर दिखाएंगे।
1: करेक्ट,
0: तैयार हैं आप? जय जवान। आइए बढ़ते आगे। आइए, अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पर आपको लेकर आए हैं
1: जी।
0: और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सामने हमें जो दृश्य दिखाई दे रहा है, वो इस जगह की सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन करता है और यहाँ पर चैलेंजेस क्या है वो बताता है। हमारे सामने पाकिस्तान की पोस्ट है
2: जी। ज़रूर, अभी आप एक व्यू पॉइंट पर खड़े हैं और जिस लोकेशन पर आप अभी खड़े हैं, हम तीनों साइड में पीओके से घिरे हुए हैं और यहाँ पर अगर आप सामने देखेंगे तो आपको हर चट्टान पर एनिमी की पोस्ट दिखेगी, बेस पर पोस्ट दिखेगी।
0: They can also see us.
2: Correct.
0: Right now?
2: Presently, yes. In real time.
0: अच्छा, क्योंकि उरी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है पाकिस्तान का, जो भी हमारे वॉर्स हुए उस हर वक्त में ये बहुत सेंसिटिव रहा, और अभी जो आप संदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: तो अगर हम इसको हिस्टोरिकली जोड़ें तो ये पूरा एक झेलम वैली, जो अगर अभी हमें नीचे दिख रहा है, ये झेलम वैली का अगर आप इंस्टेंस लें तो पुराने टाइम से ही, जब हम बोलते थे झेलम वैली कार्ट रोड या फिर सिल्क रूट, यही वो रूट है जो श्रीनगर को कनेक्ट करता था मुजफ्फराबाद, फिर इस्लामाबाद और फर्दर टू सेंट्रल एशिया। सो सारा ट्रेड इसी रूट से होता था। इसकी खास बात यह है कि ये विंटर्स के टाइम भी कट ऑफ कभी नहीं हुआ था, तो पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस ये रूट हमेशा ओपन रहा था। ये लास्ट में एक लाइन ऑफ डिफेंस बन गया था, जिसको अभी हम LC के नाम से या LOC के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पिछले साल यहाँ पे काफ़ी शेलिंग हुआ था, बट अगर मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल दूँ डिफरेंस बिटवीन हमारी आर्मी और उनकी आर्मी, तो हमारी आर्मी ने कभी भी किसी सिविलियन एरिया पर एक भी बम नहीं गिराया, हालांकि हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे, बट उन्होंने ये नहीं किया। हमारे काफ़ी गाँव में बहुत भारी मात्रा पर नुकसान हुआ था।
1: तो POK इस बार्ड वायर के उस तरफ से शुरू होता है
2: जी। तो नाला एक सिधाई बना रहा है,
1: नीचे इस तरफ भी POK,
2: नाले के इस तरफ हम हैं और दूसरी तरफ POK स्टार्ट। आपको जो गांव सामने सारे दिख रहे हैं और जो रिज लाइंस दिख रही हैं, वो सब POK हैं।
1: You explain so nicely and you're so clever, yaar. Brilliant.
2: So nice.

0: आपने बंकर देख लिया, बंकर के अंदर जिंदगी क्या है और कैसे दुश्मन पर नजर रखनी है, लेकिन ये देखिए आपने हमें लाइव पेट्रोलिंग की। जो रूटीन प्रोसेस और रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है मेरे ख्याल
1: से, ये नदी से है,
2: ये पूरा फेंस है, तो बेसिकली दो पोस्ट के बीच में अगर हमें फेंस को डोमिनेट करना है तो हम उसको पेट्रोलिंग से करते हैं। और एक सवाल आपने मेरे से ऊपर भी पूछा था कि ख़राब मौसम के टाइम पे हम कैसे फेंस की निगरानी करेंगे या देखेंगे या सर्विलेंस डिवाइस से, तो पेट्रोल आपके सामने लाइव जो चल रही है ये फेंस की निगरानी करती है, कोई भी दुश्मन दिखने पर ये फायर करेगी या फिर चेक करेगी कि फेंस इंटैक्ट है या कोई घुसपैठ हुई तो नहीं। हम लोग अपने घर में तो रेस्ट ले सकते हैं बट पेट्रोल्स कभी भी ख़राब मौसम के टाइम कभी रुकती नहीं है। तो आपने भी LOC शूट की थी उस टाइम पर, क्या आपने भी ऐसे ही पेट्रोलिंग करने की कोशिश की थी?
1: थोड़ी पेट्रोलिंग की और हमें थोड़ा एक्शन करना पड़ा, भाग दौड़ करनी पड़ी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन का स्ट्रेस था ना, बिकॉज इट्स क्वाइट हाई अप।
0: कैप्टन अनुज नैयर का किरदार आपने,
1: दैट्स राइट मैम, वेल रिमेम्बर्ड।
2: तो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है आर्मी में जो हम कैरी आउट फॉरवर्ड करते हैं, नाम नमक और निशान। आपने इसको बहुत जगह लिखा हुआ भी देखा होगा, अगर इसका आप लिटरल मीनिंग लेंगे तो नाम हमारे पलटन का नाम, नमक हमारे देश का नमक और निशान हमारा झंडा जो आपने ऊपर देखा या तिरंगा। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें मोटिवेट करती हैं इन सोल्जर्स को अभी भी चलने के लिए इस हार्ड टेरेन में और इस डिफिकल्ट टाइम में भी ये पेट्रोलिंग करते रहते हैं।
1: शाबाश, जय हिंद,
0: जय जवान,
1: जय हिंद, जय जवान।
0: फॉरवर्ड पोस्ट में अभी तक जितना समय हमें मिला, मेरी नजर कुक हाउस पर आकर टिक गई है। पेट पूजा का वक्त है। Are you hungry?
1: Oh, I could eat.
2: अब तैयार है आपके लिए, हमने बहुत अच्छा
0: क्या बात
1: है, After you.
0: वाह क्या बात है, एकदम बिल्कुल एक छोटे से सेटअप में सारे जरूरत के सामान मौजूद है यहाँ पर।
1: एक्चुअली खाना बनाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी आग की जरूरत होती है,
0: पर हम तो सुपर शेफ से बात कर रहे हैं।
1: आपको कैसे मालूम? सुपर शेफ तो नहीं, लेकिन हम भी किचन में काफी टाइम स्पेंड करते हैं हम घर पे।
2: आप अपने हैंड्स यहाँ ट्राई करना
1: चाहिए? आई डोंट माइंड, अगर आप मुझे कुछ सिखा दें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी।
0: पूरी बनाई है आपने
1: जिंदगी में? एक्चुअली नहीं बनाई।
0: चलिए आज फिर आप ही का टास्क है।
1: कैसे करना है भाई?
0: थोड़ा सूखा रखना पड़ेगा।
1: This is very nice, Meenakshi. Let me see one second. I'm taking the. Yeah, take this. It's very good. You're doing well. And I like that. This is mine. No, my God. You fixed this one also.
0: Yes.
1: Meenakshi, well done. Wow. Let's have a puri today.
0: इस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि जितना इम्पोर्टेंट पूरी का बेलना, उसका तले जाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है गरम गरम पूरी को खिलाया जाना। ठंडी पूरी में बात नहीं, मजा नहीं आता।
1: थैंक यू,
0: दैट्स नाइस।
3: दिल पे जो खराशे
0: हैं,
3: तुझको ये तराशे हैं।
0: खाना बनाना एक आर्ट है, खाना खिलाना भी एक आर्ट है।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
0: अच्छा आप बस ये बताइए, पहचान कर किसने बनाया है? एक मैंने बनाई है, एक सर ने बनाई है, बताइए क्या लग रहा है आपको, किसने कौन सी बनाई?
4: ये वाली सर ने बनाई है।
1: ये वो क्या बोलते हैं इसको, ये वो गलत प्रोफाइलिंग वाली बात हो गई। आपको लगा मैडम अच्छी पूरी, बट आप करेक्ट हो।
0: आप खाना भी खाइए प्लीज।
1: हम भी खा रहे हैं,
0: बिल्कुल आपके लिए भोजन का पूरा अरेंजमेंट है।
1: दाल एंड राइस। तो आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। वो तो हम भी हैं थोड़े बहुत।
0: हम भी हैं थोड़े बहुत।
4: मैम एक्चुअल में हम तो इधर बॉर्डर एरिया पे रहते हैं, आपके फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आयोगे, तो आपको इधर कैसा लग रहा है? इधर आने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है, कैसा माहौल है, क्या क्या लग रहा है आपको इधर?
0: मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो घर में हम लोग आर्मी की बातें, दफ्तर में आर्मी से रिलेटेड कई बार शूट्स होते हैं, खबरें आती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर उसको इतने नज़दीक से जब देख रहे हैं ना, तो सरियल जिसको बोलते हैं, कि यकीन नहीं हो रहा एक बात की है कि ऐसी कंडीशंस में आपको दिन रात जज्बे के साथ जुड़े रहना है।
1: पर हमारे बच्चे भी हैं, वो पूछते हैं कि दुनिया में इतनी सारी वॉर्स चल रही हैं इस टाइम पे, यू नो, और ख़तरा भी उन्हें लगता है. वो पूछते हैं कि हमें कौन देख रहा है और क्या होगा और सिचुएशन बढ़ेगा तो नहीं. तो जब हम बोलते हैं कि नहीं, हमें आर्मी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो भी आपको सलाम भेजते हैं और हम वी आर ऑल वेरी प्राउड.
0: चलिए, खाना हो गया. जी, खाना हो गया. अब अपने सफर को हम आगे बढ़ाते हैं.
1: हवा के हजम
0: प्यारी बातें आप सबके साथ में हुई. यू एंजॉयड द कन्वर्सेशन.
1: सो नाइस. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर.
0: चलिए, लेकिन अभी आज के दिन में हमारे कुछ और प्लान्स हैं आपकी बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी, तो अब उस वक्त को आगे बढ़ाते हैं.
1: यस.

0: सैफ, अब आपको हम लेकर चल रहे हैं अमन सेतु की तरफ। लेकिन इस लोकेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ से मुजफ्फराबाद 50 किलोमीटर और इस्लामाबाद 200 किलोमीटर, लेकिन इस जगह तक आम टूरिस्ट भी आ सकते हैं। हम भी इस वक्त आपको लेकर जा रहे हैं झेलम के ऊपर बना हुआ अमन सेतु, लेकिन तैयार किया गया ताकि उस तरफ और इस तरफ लोगों की एक स्मूथ आवाजाही जो है, क्योंकि यहाँ से बस भी गुजरा करती थी। लेकिन 2019 के पुलवामा हमले के बाद, जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को में उतार चढ़ाव आया और सब चीज़ हुई, उसके बाद से ये बंद। लेकिन अभी भी हमें टूरिस्ट आ
1: रहे इस सड़क से आ रही थी। यस, आई थिंक टूरिस्ट को भी हम इंडियंस को दिखाना जरूरी है कि वी आर सेफ।
0: कमान अमन सेतु में कहाँ तक जा सकते हैं लोग? बस ये दिस इज द लास्ट पॉइंट।
2: जो जब हम कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो लास्ट पॉइंट है कमान अमन सेतु गेट होता है। इसके बाद जो ब्रिज है जो आप सामने देख रहे हैं, ये 2005 में एक रिकॉर्ड टाइम 6 घंटे में बिल्ड किया गया था। ये पूरा ब्रिज इंडियन आर्मी की इंजीनियर रेजिमेंट ने बिल्ड किया हुआ है
1: 6 घंटे में।
2: हाँ जी,
0: 6 घंटे में
2: जी। एंड इसका 2/3 हिस्सा हमारे पास है एंड 1/3 हिस्सा एनिमी के पास है जो कि पीओके है। अभी आप सामने अपने देख सकते हैं ये एनिमी के कुछ लोग, साथ ही साथ उनके फ्लैग्स। अगर आप क्लियरली वहाँ सामने व्यू पॉइंट के पास देखेंगे तो आपको दो डिस्टिंग

0: I think it's a call for all Islamics.
1: Parvez sahab, aap hume explain karenge.
2: Main ek quite interesting cheez batana chahunga jo command post pe sabse interesting cheez hai. Aap notice karenge ki aap dekhenge POK wale side mein unhone bahut sare flexes lagaye honge. To slightly jo aap dekhenge green roof building ke slightly left side ek flex board laga hua hai, ek hamare samne aur ek bridge ke just opposite laga hua hai. To in sare flexes pe inhone Iqbal ki poetry likhi hai. Ilama Iqbal jo point hai, to slightly left side jo view point ka jo flex board laga hua hai, agar main wo aapke liye padhu, usme inhone Urdu mein likha hua hai ki Pakistan noor hai, noor ko zawal nahi. Which means कि पाकिस्तान इज़ दैट लाइट विच नेवर एंड्स. एंड जो दूसरी दो लाइन्स लिखी हुई हैं, एक हो मुसलमान हरम की पासवानी के लिए नील के साहिल से लेके तबे काश्कार तक. विच मीन्स ऑल द मुस्लिम फ्राम रिवर नाइन एंड इजिप्ट टू काश्कार प्रोविंस इन चाइना मस्ट कम टूगेदर टू प्रोटेक्ट द होली काबा. मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द यूनिटी ऑफ द मुस्लिम्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द होली काबा वेयर मुस्लिम परफॉर्म हज. एंड जो हमारे सामने जो आप देखेंगे फ्लैक्स बोर्ड, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है. ब्रिज के बिल्कुल अपोजिट इस बोर्ड पर इन्होंने उर्दू और अरबिक का मिक्सचर लिखा हुआ है. तीन लाइंस लिखी हुई हैं. तो फर्स्ट लाइन जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. सेकंड लाइन इज़ पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. एंड लास्ट लाइन इज़ कश्मीर पाकिस्तान की शरग. विच मीन्स पाकिस्तान
1: कश्मीर पाकिस्तान की
2: शरग है. शरग यस जगलर मैन. जगलर मैन. और जो पहली लाइन इन्होंने लिखी हुई है उसका ये मतलब है कि पाकिस्तान केम इन टू बींग एज अ रिलीजियस कंट्री. जब वो बना वो मजहब के आधार पर बना. एंड सेकेंड लाइन इज उसकी रिलेशन किसी भी कंट्री से या कश्मीर से, वो जस्ट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन है. एंड लास्ट लाइन इज कश्मीर इज द जगलर मैन ऑफ पाकिस्तान. तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने यहाँ पे की है, इस बोर्ड का हमने रिप्लाई दिया अपने राइट साइड ये फ्लैक्स बोर्ड लगा के, विच इज़ मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. दैट रिलीजन डोंट टीच अस टू हेट ईच अदर. एंड इट ऑल्सो शोज द सेक्युलर नेचर ऑफ अवर कंट्री. एंड हमने उर्दू में लिख रखा है ताकि वो पढ़ सकें. एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इन फ्लैक्सेस के बारे में कि ये वाली फ्लैक्सेस और ये वाली फ्लैक्स पेन डाउन बाई सेम पॉइंट इलामा इकबाल. तो रिप्लाई भी हमने उसी पॉइंट का दिया. तो ये कमान के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग.
1: इसमें मुझे लगता है एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है कि आपके पास नज़र तो है लेकिन क्या नज़रिया है देखने का या नहीं है. और जिन लेखक और जिन शायर के जरिए उन्होंने धर्म के आधार पर एक मैसेजिंग की है, उन्हीं शायर की लेखनी से हमने पूरा भारत कैसे एकजुट होता है उसका मैसेज यहाँ पर दिया है. प्राउड टू बी एन इंडियन. सैफ, जब आप इस वक्त इन वादियों को देख रहे हैं
3: जी,
1: तो आप सोचिए कि इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच इंडियन आर्मी सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस को भी अंजाम देती है.
3: एक्चुअली मैं यही सोच रहा था कि हमारे देश का एक सबसे खूबसूरत, शायद सबसे खूबसूरत, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज थोड़ा सेंसिटिव है और इट्स नॉट ओपन टू फुल टूरिज्म एंड ऑल ऑफ अस. इट्स लिटिल लिटिल सैड इन अ वे, यू नो. काश ऐसी खूबसूरत जगह में हम, यू नो, पूरा देश कंफर्टेबली आ सकता.
1: कश्मीर तो एक वक्त में फिल्मों की शूटिंग
3: मेरी माँ ने इतने गाने किए, शॉट सो मेनी फिल्म्स, माय पेरेंट्स आल्सो.
1: उनकी डेब्यू फिल्म कश्मीर की करी.
3: Yes,
1: मैं आपको अब मेरे ख्याल से देश की सबसे पर्पस ड्रिवन व्हीकल जो है और एट द सेम टाइम जहाँ पर सिक्योरिटी और भरोसा ये दोनों साथ साथ चलते हैं, उस व्हीकल की तरफ लेकर जा रही हूँ. इंडियन आर्मी का कैस्पर व्हीकल. आर यू रेडी फॉर इट?
3: एब्सोल्युटली.
1: चलिए, आपको पूरा रियल टाइम एक्सपीरियंस देने की हमने तैयारी की है इंडियन आर्मी के साथ में. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो पहनाए जाएंगे. पूरा अनुशासन
3: बना
1: से.
3: यस.
1: चलिए, कैस्पर व्हीकल में हम आ गए हैं. आपको
3: कैसा लग रहा है यहाँ बैठकर? मैं टैंक में बैठा हूँ और वो काफ़ी मतलब टाइट था ऑब्वियसली. यहाँ की फीलिंग तो ये आपको मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए है, कोई अगर एक सिचुएशन में कुछ एक्शन हो रहा हो या
4: जैसे हमारे पास कहीं भी कोई फायर आ रहा है हमारे
3: पास,
4: तो इस पर ट्रांसपोर्ट करते हैं हम. हमारे ऊपर फायर डालेगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सेफली वहाँ तक जाएंगे और उसके ऊपर डायरेक्ट फायर डालेंगे, एम फायर डालकर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे सर.
1: आई थिंक एक एक्सपीरियंस हम जरूर उसके ऊपर जाकर भी देखना चाहेंगे, अगर आप परमिशन दें हमें तो.
4: बाहर का व्यू दे

0: सेलुलॉइड नहीं है, इट्स अ रियल एक्सपीरियंस. तो ये सबसे जो डिफिकल्ट टेरेन्स है ये उनमें से एक. सो नॉर्थ कश्मीर में इस वक्त हम है, नॉर्थ कश्मीर इज लाइक द गेटवे ऑफ कश्मीर.
1: All three sides, we are surrounded by Pakistan-occupied Kashmir,
0: yes,
1: right?
0: Yes.
1: Okay, and this one corridor is open into Srinagar. Amazing.
2: Sir, यहाँ पर हमारा कैस्पर का जो रास्ता है वो शॉर्ट है. यहाँ से हमारी जिप्सी मूव करेंगी और हमारी जो पेट्रोलिंग है वो मूव करेगी. तो यहाँ पर हम अपना कैस्पर रोक देंगे. यहाँ से अभी हम डाउन होते हैं
0: सर. सर चलिए, व्हीकल से उतरने के बाद व्यू तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे लगता है सर चैलेंजेस भी उतने ही हैं. तो हमें बताइए अब अगला स्टेप क्या है यहाँ से.
2: अब यहाँ से हमारा ड्रोन मैन कैमरा वाला यहाँ से पूरा अपना उड़ाएगा ड्रोन और पूरा एरिया सर्च करेगा.
0: आइए बढ़ते हैं आगे.

0: मुझे ज़िंदगी के इतने विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर कि इतनी खूबसूरत जगह है और हम एक ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन के ग्राउंड ज़ीरो एक्सपीरियंसेस को ले रहे हैं कि आर्मी के ऑपरेशन इस जगह पर कैसे होते हैं, टेररिस्ट को कैसे आपको न्यूट्रलाइज करना है। अभी रिसेंटली क्योंकि सरकार बहुत काम कर रही है इस चीज़ पर कि बॉर्डर टूरिज़्म जो है उसको बढ़ाया जाए। बॉर्डर टूरिज्म का पर्पस भी कहीं ना कहीं ये है कि आपको पता हो कि आपके जवान इस तरह की सिचुएशन में कैसे काम करते हैं।
1: इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं ना, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द थिंग।
0: जितने गांव हमें आसपास दिखाई दे रहे हैं,
2: ये रूट जा रहा हूं
1: क्या क्या है वो?
0: चलिए अब व्हीकल हमारा रुक गया, यहां से अब हम ऑन फुट जर्नी आगे बढ़ाएंगे।
1: ओके,
0: अब आपके ट्रैकिंग का टेस्ट होगा यहां पर। चलिए अब ऑन फुट हम जब पेट्रोलिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कितना डिफिकल्ट रहता है आप लोगों के लिए पैदल चलते हुए जाना और पूरे एरिया को चेक करना?
3: मैम, डिफिकल्टी टास्क के ऊपर डिपेंड करती है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो इलाका है इसको हम बहुत ही रेगुलरली हम डोमिनेट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता अब हमें हमारे जवानों को इतनी डिफिकल्टी आती है, बिकॉज हम उसके लिए हमेशा ट्रेन करते हैं,
0: ट्रेन किया जाता है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पे रेजिडेंशियल भी है, साथ में घर बने हुए हैं, जो मैं देख पा रही हूँ कि पूरा गांव का एक इलाका है और कित रिमोट एरिया है एकदम।
3: ये जो विलेज है ये एलसी के बहुत पास है, जो भी हमारे पेट्रोल्स जाती है उसमें हमें विलेजेस भी मिलते हैं, जंगल के पैचेस भी मिलते हैं, नाले भी मिलते हैं, तो अलग अलग एरिया को हम अलग अलग ड्रिल से सैनिटाइज करते हैं।
1: जैसे हम अभी ऑलमोस्ट रोड पे चल रहे हैं तो कंट्रोल में है, लेकिन अगर वहाँ पे चेक करना हो,
3: साथ में हमारे साथ हमारा ड्रोन ऑपरेटर है, ही इज लाइक ए हॉकआई।
0: ये अभी पूरा जो गांव है, मतलब यहाँ पर ये खेती भी हो रही है, लोगों के घर भी है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये है कि क्योंकि बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, हम बहुत रिमोट एरिया में हैं इस वक्त।
1: कितने नज़दीक हैं हम बॉर्डर से?
0: आप
1: 1 किलोमीटर है मैन।
0: अच्छा, जो सर इनफैक्ट बेहतर बता सकते हैं बात को, कि जो लोग बॉर्डर के इस एरिया में बसे हैं दे आर इनफैक्ट द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स टू एनीथिंग दैट हैपेंस ओवर देयर।
1: द सिविल इंजीनियर,
0: हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तरफ जैसे कारगिल वॉर के समय भी जो पोर्टर्स थे वहाँ पर, या जिन्होंने सामान ऊपर पहुँचाया, जिन्होंने मदद की, और सबसे पहले जिन्होंने आतंकवादियों को वहाँ पर स्पॉट किया था, जिन्होंने बाद में इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया।
3: यहाँ के जो लोकल्स हैं गुजर्स भी हैं, खेती भी करते हैं, वो इस इलाके में घूमते रहते हैं, उनके रिश्ते फौज के साथ बहुत अच्छे हैं, कुछ भी उनको अटपटा लगता है, सस्पिशियस लगता है, वो तुरंत हमें बताते हैं।
0: दे आर लाइक द आर्मी बिहाइंड द आर्मी।
3: बिल्कुल, वो हमारे एक्सटेंशन ऑफ हैंड हो गए बेसिकली।
0: Was it fire?
3: In actual operations, we just hear such kind of sound whenever someone fire. Then we have to locate from where that sound is coming to locate the firer.
4: We are providing. Now, what whenever happens, this kind of situation happens.
1: Take cover.
4: Take cover.
1: All right.
0: आप लोग कवर कैसे देते हैं यहाँ पर?
4: जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हम इतनी ट्रेनिंग कर चुके होते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन को नेगोशिएट कर सकें, साउंड को लोकेट करते हैं हम किस दिशा से आ रही है, और अपनी ट्रेनिंग सीख हुई ड्रिल से हम उस एरिया को क्लियर करते हैं और दुश्मन को न्यूट्रलाइज करते हैं, और फिर अपना टास्क को करने के लिए आगे बढ़ते
1: हैं। अमेजिंग,
4: अभी हम आगे बढ़ते हैं।
0: ये अभी जो हमने ड्रिल देखा यहाँ पर, ये रील से कितना अलग था?
1: See, that's one thing, मैं हमेशा बोलता हूँ फिल्मों में भी, रियल गन फायर की जो आवाज़ होती है ना, इतना लाउड, इतना पावरफुल होता है।
0: तो ये हमारी पेट्रोलिंग का आखिरी पॉइंट है सर?
3: ये आखिरी पॉइंट नहीं है,
1: ठीक है।
3: हाँ, एक्चुअली जैसे आप देख सकते हैं आगे ट्रेन बहुत मुश्किल है, हमारा पेट्रोल नॉर्मली नाले तक जाता है, आप वो आयरन ब्रिज देख सकते हैं उसको क्रॉस करके आगे भी जो हमारा डेजिग्नेटेड पोजिशन है वहाँ तक हम पेट्रोल करने जाते हैं। ये नाला वेस्ट की तरफ से अभी लगभग 1 किलोमीटर दूर से एलसी है, ये पीओके से नाला आ रहा है,
0: इस्लामाबाद नाला।
1: वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ इंडिया, नो? दिस लुक एट अ नाइस पिकनिक स्पॉट।
0: लेकिन इंसानों के बीच के जो कन्फ्यूजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेंशन्स हैं, बॉर्डर्स के जो टेंशन्स हैं, वो सब क्या जमीन पर सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं, ये उसका एक लाइव उदाहरण है।
1: आपको
0: उसमें सुंदरता, प्राकृतिक खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन जो यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, बॉर्डर की सिचुएशन है, उसमें इस मोड में तो आप कभी यहाँ नहीं आ सकते हैं। और सेना का यहाँ पर होना और एक पूरा
1: एक तो
0: इस एरिया को प्रोटेक्शन देना
1: बहुत ज़रूरी है, वरना श्रीनगर पहुंच जाएंगे भी, अगर आपकी आप नहीं थे तो
3: नहीं पहुंचने देंगे।
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं,
0: ये इंडियन आर्मी। आपने यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट एरिया में पेट्रोलिंग का एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन जिन जवानों के साथ हमने पेट्रोलिंग की वो जवान कैसे तैयार होते हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है, वो कैसे, कितनी हार्डशिप्स हैं मौसम से लेकर फिजिकल फिटनेस से लेकर, इंटरेस्टेड हैं आप ये देखने के लिए?
1: बहुत इंटरेस्टेड हूं, इनफैक्ट
0: ये वो वाली फिटनेस नहीं है जो हम जिम में पसीना बहाते
1: हैं,
0: ये अलग तरह की फिटनेस है। तो आपको मैं इस वक्त सीधे वहीं लेकर जा रही हूँ, और हमारे साथ सर इस वक्त आ चुके हैं जो हमें इस डेमो को एक्सप्लेन भी करेंगे। वंडरफुल मीटिंग यू सर,
5: थैंक यू सर। अभी के हिसाब से सब हमने ये पिक्चर पेंट किया है कि जनरल एरिया रेंज,
0: हाँ।
5: रेंज पे एलमी के 5-6 मिलिटेंट जो कि आके डिफेंस ले चुके हैं। हमारे इंट के मुताबिक हम अभी अपनी जो ग्राउंड सेना है उसको इनिशियल हाँ। हाइट में रखा हुआ है। उससे पहले हमने दो अपने आर्म्ड व्हीकल जो कि ऑटोमेटिक वेपन से लैस है, पहले हम फर्स्ट अटैक फर्स्ट वेव में उनके ऊपर आर्म्ड व्हीकल के साथ करेंगे, वो दुश्मन उसी टाइम पिन डाउन हो जाएगा।
1: राइट,
5: पिन डाउन होने के बाद फिर हम अपनी पैदल सेना को इनिशियल हाइट से निकाल के फॉरवर्ड हाइट 1 फॉरवर्ड हाइट 2 उसके बाद फाइनल असॉल्ट, उसका एक डेमो अभी आपको दिखाएंगे हम। तो शुरू करें
0: जी,
1: शुरू करो सर।

0: अब इस स्पिन राउंड के बाद जो कि हम आर्म्ड व्हीकल थे उन पे अगर अपोजिशन आती भी है तो इन पे फायर का कोई असर हुआ नहीं। दूसरा इतना ज़्यादा शॉक एक्शन उसको दे दिया कि वो भी पिन डाउन हो गया।
1: क्या कुछ फायरिंग हम ट्राई कर सकते हैं
0: जी?
1: शेफ सर आप ट्रेन हैं बचपन से?
2: बचपन से।
1: चलिए देखते हैं।
0: रेडी अपर टर्न से टर्न राउंड।

0: का फायर हो जाए दाना ऊपर।
1: कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका?
2: That was tiring. Tiring. Somehow tiring. But exciting.
1: अभी पता चलता है कि आपने टारगेट्स कितने हिट किए हैं। जरूरी तो रिजल्ट जानना है।
2: यहाँ से लग रहा था कि एक आध लगे।
3: नहीं, टारगेट एरिया में तो है। टारगेट तो पकड़ रखा।
1: 10 आउट कितने नंबर?
3: अभी हिटिंग पे पता चलेगा।
1: अच्छा, वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा कि कितना करीब था टारगेट।
3: गोलियां तो लगी हैं आपकी, चाहे डिस्पर्स हो गए, लगी हैं। तो जो इस सर्कल में उसका एक पॉइंट है।
2: स्टिल ओके, नॉट बैड, राइट?
1: क्वाइट गुड, आई मस्ट से टू माय व्यूअर्स आल्सो, क्वाइट गुड।
2: यहाँ
1: पे आर्मी की फील्डिंग सेट है और सिनेमा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैं तो कह रही हूँ पटौदी खानदान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
2: भाई धीरे से डालो,

0: कैसा रहा आपका क्रिकेट का एक्सपीरियंस?
1: मुझे लगता है कि दुनिया में से बहुत जो खूबसूरत ग्राउंड्स हैं,
0: हाँ,
1: ये एक होगा।
0: एंड आर्मी की जो तैयारी है, जो टीम्स हैं, उन सबके अंदर जो एक जज्बा है,
1: so nice. Again, cricket is another bonding sport. When you play now with people, it makes you respect them on a different level.
0: तो आज का पूरा दिन कैसा रहा आपका?
1: मुझे बहुत अच्छा, बहुत मजा आया।
0: तो हमारी दिन की एक्टिविटीज का पार्ट यहाँ खत्म होता है, लेकिन जब आपने कहा कि आपको इतना अपनापन महसूस हुआ और यहाँ पर जितनी एक्टिविटीज आपने की, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है आपकी कल्चरल आइडेंटिटी, जिसको हम देखेंगे आज की रात में, और उसको जब आप अटेंड करेंगे तो आप अपने साथ बहुत सारी यादें आज लेकर जाने वाले हैं, ये मैं आपको अभी गारंटी कर सकती हूँ।
1: डॉक्टर, आई एम एक्साइटेड।
0: अपने सारे गाने और डांसेस याद है ना?
1: ओह नो, अभी मुझे डर लग रहा है।
0: ऐसा ना हो कि रियल टास्क कब आए आपके सामने।
1: आई थिंक दैट्स द स्कैरी पार्ट। ये सब ठीक था,
0: लेकिन आप मिलेंगे स्टेज पर।

0: कुछ घंटे के लिए आपकी जिंदगी आज जी है, और मैं ये मानता हूं कि बहुत ही मुश्किल है, और हर मुश्किल में आपका जज्बा कायम रहता है, और इस बात का मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं अपनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री, एक्चुअली मेरी परिवार और पूरे देश की तरफ से आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूं। आपकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, सेफ रहते हैं।
1: मैं मंच पर कुछ जवानों को आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्होंने स्पेशली आपके लिए आज इस कार्यक्रम के लिए तैयारी की है, अपने उन इमोशन को अपने शब्दों में ढालने की कोशिश की है। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी लांस नायक अंकित जी को। प्लीज आइए अपनी टीम के साथ। बहुत स्वागत है आपका मंच पर।

0: Congratulations.
1: एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम पूरी टीम को थैंक यू भी कहेंगे. तो अब स्टेज पर मैं इनवाइट करना चाहूंगी सिपॉय साहिल नैन जी को, और उन्होंने आज एक परफॉर्मेंस तैयार किया है.
0: Okay.
1: How excited you are for that
0: performance? I'm very excited to see.
1: और ऐसा लग रहा है कि आप ही की फिल्म का कोई गाना है.

0: बहुत खूब
1: बहुत खूब भाई
0: भाई तालियां तो नहीं सुनाई दी हैं क्योंकि जिस लेवल का परफॉर्मेंस हुआ है तो यूजुअली होता है क्या हम लोग कहते हैं नहला था या दहला था तो नहले पर दहला था। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल मुझे और पूछना है, सैफ अली खान के सामने उन्हीं के डांस को आपको उन्हीं के अंदाज में करना है, ये तो बट कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है, इसे तो मानना पड़ेगा।
2: यस मैम।
1: अरे यस मैम, नहीं बहुत अच्छा किया उन्होंने।
0: आपने जब आप जब इन्हें परफॉर्म करते हुए देखे थे, आपको क्या अपना पूरा शूट याद तो नहीं आ रहा था उस समय?
1: मुझे वो शूट याद आया।
0: Anything interesting that you want to share?
1: The shoot was interesting. वो गाना इतना अच्छा था, लेकिन कोरियोग्राफर ने कहा कि कुछ मूव्स बताए, लेकिन ज्यादातर उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से करो।
0: हाँ।
1: तो वो ऐसी ऐसी बना। और अगर आपने मतलब ऑन द स्पॉट मेकअप किया,
0: आप ही हैं।
1: आपने देखा वो शुरू होता है वो विस्की ग्लास के साथ।
0: हाँ।
1: वो इतना फेमस हो गया एनिमल में जो बॉबी डियोल ने सीन किया था, लेकिन एक्चुअली वो इस गाने में था सबसे पहले। So that was the
0: trendsetter,
1: beginning.
0: Huh?
1: Trendsetter.
0: Thank you so much, sir. Thank you. And all the very best.
1: All the best.
0: डांसिंग होगी, सिंगिंग होगी, अब थोड़े से क्यू एंड ए करते हैं, कुछ सवाल जवाब। आप सब लोग तैयार हैं कुछ सवाल जवाबों के लिए? और क्वेश्चन आंसर में आपकी रियल लाइफ से लेकर, आपके रियल लाइफ से लेकर, आपके एक्सपीरियंसेस पर ये सारे क्वेश्चंस होंगे। और इसके लिए खास तौर पर हमने कुछ येस और नो प्रिपेयर किया है, कौन सा हाँ है, किस सवाल का जवाब, किस सवाल का जवाब ना है। आप लोग तैयार हैं अपने सवालों के साथ? जयदीप जी, प्रवीण जी, शिवम जी और दीपक जी,
3: गुड इवनिंग जी।
0: गुड इवनिंग।
4: ये एक बैठे बैठे सवाल याद आ गया, क्या आपको कभी किसी रोल या शो को मना करने के बाद में आपको पछतावा मिला है?
0: कभी किसी रोल या किसी शो?
1: आई अंडरस्टूड। हां,
0: यस और नो? नो नो, बट यू हैव टू शो द ब्लैक कार्ड। यस
1: यस शायद।
4: यस
0: दीपक जी, आप हैं यहां पर अभी?
5: जी।
0: ओके, ही इज हियर।
5: गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग
5: साहब। सर, सवाल आपसे है कि क्या पहली नजर में प्यार हो सकता है?
0: यस और नो? आई थिंक यस।
1: यस आई थिंक सो। हाँ आई थिंक सो। लोग कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टू फॉल इन लव, मतलब प्यार में गिरना।
5: जी सर।
1: इतना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल नहीं होता, मतलब अपने बस में नहीं होती बात।
5: जी सर।
1: तो आसानी से हो जाता है, लेकिन उसमें रहना, उसको निभाना, ये मर्दों वाली बात है।
0: नहीं, लेकिन एक चीज बताइए आप पहले, ये जो पहली नजर का प्यार जिसको आपने यस कहा है, ये आपको कौन सी उम्र में हुआ था?
1: वो तो बहुत रिसेंटली हुआ।
0: बहुत रिसेंटली?
1: यस आई मीन क्या अभी एक्चुअली हो गए?
0: रिसेंटली तो नहीं है।
1: नो नो, विद माय या इट्स बीन गॉड, इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 इयर्स विद माय वाइफ।
0: यस, इट्स प्लेइंग सेफ।
1: Of course, always safe.
4: Big hands up, Karina.
1: Thank you. Yes, and she is also a huge supporter of the army.
5: Yes, thank you, sir.
1: She's very happy I'm here, and unki taraf se lots of love to all of you.
5: Thank you, sir.
6: Yes. Jain sir.
1: Jai Hind.
0: Jai Hind.
6: Welcome to Uri, sir.
1: थैंक यू।
6: सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इस बढ़ती उम्र में आपकी फिटनेस का राज क्या है सर? क्योंकि आर्मी में फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कुछ टिप्स बताइए कि आप हमारी आर्मी को भी।
1: भाई मैं अपने आपको ऐसे सिचुएशंस में डाल देता हूं जैसे जय जवान, जहां मुझे पहाड़ों पे चढ़ना पड़े और बड़ी बड़ी मशीन गन्स चलाना पड़े, तो आदमी को फिट रहना चाहिए। नहीं, आई थिंक सबके साथ फिटनेस का दौर चल रहा है आजकल, और एज हम सिर्फ एक नंबर मानते हैं जैसे कहते हैं लोग, और अच्छा खाना खाना, डाइट, हेल्थी खाना खाना, एक्सरसाइज करना और फिट रहना, और ड्रिंक्स पे एकदम कंट्रोल करना।
0: आइए अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और एक और डांस परफॉर्मेंस सैफ सर की एक और फिल्म से यहाँ पर, जिस गाने से आप आज दिन भर डर रहे थे, अब नंबर उस गाने का है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नायक अर्जुन और उनकी टीम को। आइए, बहुत स्वागत है आपका।

0: ओले भी बरस गए, बर्फ भी बरस गई, मुझे लगता है सब बरस गया। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा आपका, थैंक यू सो मच।
1: वेल डन, कांग्रेचुलेशंस।
0: अगला है परफॉर्मेंस
1: जी,
0: और इस परफॉर्मेंस के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करूंगी हवलदार गजेंद्र और उनकी टीम को। आइए सर, वेलकम ऑन स्टेज।

0: सॉरी मैंने आपका गाना बिगाड़ा।
1: अपने
2: बहुत खूब, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच फॉर द एंटायर टीम फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट। दिल चाहता है।
3: थैंक यू
0: सो गुड।
2: तमंचे पर डिस्को परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर इनवाइट करूंगी हवलदार अरुण रोआ और उनकी टीम को। आइए प्लीज।

कमंचे पे डिस्को आपने जो करके दिखाया है अभी, एकदम महफिल को आपने ऐसे रेडी कर दिया है कि जिसके बाद हम नीचे तो नहीं जा सकते, ऊपर ही जाएंगे। तो हम लोगों का हमेशा जब भी ये कार्यक्रम होता है जय जवान का, महफिल खत्म हमेशा आते आते भांगड़े पर जाती है। पंजाब की वाइब के बिना तो पार्टी अधूरी है, है या नहीं है बताइए? हाँ, पंजाब की वाइब के बिना पार्टी अधूरी है, नहीं है? भांगड़ा भांगड़ा देखना है आपको, किस किस को देखना है? मुझे पीछे से जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक मैं बुलाऊंगी नहीं स्टेज पे। थैंक यू सो मच, अगली टीम को स्टेज पर इनवाइट करूंगी। और भांगड़ा परफॉर्मेंस के लिए नायक अजय जी और आपकी टीम प्लीज आइए स्टेज पर।

0: बहुत खूब, आज तो पूरी बॉयज पार्टी हो गई है यहाँ.
1: थैंक यू मैम.
0: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू. बहुत खूब, कंग्रेचुलेशंस. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे.
0: आपका परफॉर्मेंस ने तो एकदम बिल्कुल चार चांद लगा दी हमारे आज की महफिल पर. और आपको मैं देख रही हूँ, आप हर डांस में आपने परफॉर्म किया है.
2: पता था, हम खून में
0: हैं. चलिए, ये परंपरा आगे भी ऐसी चलती रहे, यही मेरी बेस्ट विशेस है आपके लिए.
1: थैंक यू. बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा.
0: जवानों के बीच में जब आप हों तो उसकी एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि उस पल के लिए, उस लम्हे के लिए, उस वक्त के लिए आप भी जवान हो जाते हैं. तो हमें जवान बनने का ये मौका देने के लिए, इसे मैं यूथ के एंगल से नहीं कह रही हूँ, जय जवान के एंगल से कह रही हूँ, हमें अपने बीच होकर जवान फील कराने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की इस खास अवसर पर, आज इस कार्यक्रम में, इस सफ़र पर हम लेंगे विराम, लेकिन इस स्पिरिट के साथ कि आपके पास जब जब आने का मौका मिलेगा, हर बार आएंगे आपसे नया कुछ सीखने के लिए, आपके साथ नया वक्त शेयर करने के लिए. और सैफ सर,
1: तो जाते जाते आप सबके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, जो आई थिंक आप लोगों के लिए परफेक्ट है. कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं.
0: क्या बात है.
1: Right.
0: That's our Indian Army.
1: Really, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना प्यार मिला आपसे, बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड करने में. All the very best, lots of love from all of us to all of you. Okay, bless you.
0: Thank you so much. Thank you.
3: Clap.
4: Rolling. Clap. I love this clap. I'm gonna miss it. अगर पट्टी गई तो
5: कैसे जवाब दो?
4: No budget film. Bother me. You can sit on underneath the tree and just direct us. Hey, ek aur karo, ek aur karo. See you.
5: Yahan baithe.
4: Too loud. Main protection chahiye na.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा आर्द्र मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
9: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
10: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal, and Sandy Howard.
9: The show that sets the prime time agenda.
10: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
9: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न, इंडिया इज चेजिंग गियर्स faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
1: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
2: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV.
3: Days in Kashmir. People have bombarded me, friends, with requests for an unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
4: Very special ground report from the
5: Good evening, hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. From Parliament washout to Prime Minister Modi's speech, Kiran Rijiju lashes out at opposition in an exclusive interview with NDTV. Parliamentary Affairs Minister doubles down on PM's Dimagi Naxal attack on opposition, blames them for misleading and disrupting Parliament. Annamalai takes his political outreach to Chennai, saying his focus is not on blame game but on bringing about real change in Tamil Nadu. He also takes aim at Vijay's rivals, urging them to give the new government at least 1 year before rushing into attempts to topple it. Tamil Nadu BJP chief Nainar Nagendran stokes controversy with his remarks on Tamil Nadu chief minister on Independence Day. DMK defends Nainar's remark on CM Vijay, says third-rated remarks get such response. And Congress caught in the Vande Mataram row. BJP releases video featuring Rahul, Sonia and Kharge, claiming Rahul has heard objecting to the full rendition. Home Minister Shah says Congress should be ashamed. Karnataka BJP leader lodges complaint against Sonia Gandhi, while Bankim Chandra descendant seeks her unconditional apology. Shiromani Akali Dal MP Harsimrat Kaur Badal termed the attack on her husband Sukhbir Singh Badal in Nanded a well-planned political conspiracy aimed at disturbing peace in Punjab, urges NIA investigation. A big question mark over Bangladesh Prime Minister Tariq Rehman's India visit as Dhaka links the visit to Sheikh Hasina issue. Said it wants India to expeditiously act on its request to extradite Hasina, asserts a propitious environment is needed for the visit. And at the Congress headquarters in Delhi on Independence Day, the version of Vande Mataram was sung, and it triggered a political controversy. BJP leader has filed a complaint against Sonia Gandhi, demanded an apology from her. And the descendant of Bankim Chandra Chattopadhyay, the author of the song, the poet, and BJP MLO Sumitra Chatterjee has also written to Sonia Gandhi seeking an apology and calling the incident a repeat of the historical mistake. Union Home Minister Amit Shah also slammed Rahul Gandhi and Sonia Gandhi and said that the nation will never forgive them. BJP, meanwhile, has released a video of Rahul Gandhi claiming that Rahul is heard saying that we don't play the full version of Vande Mataram in the clip. In another video shared by BJP's Amit Malviya, where he claimed that Sonia Gandhi is heard saying no to Vande Mataram.
6: Sonia ji, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है, आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
7: हमको क्यों, मेरा पूरा फैमिली को आघात लगा, या ये आघात सिर्फ हमारा फैमिली का नहीं, ये सारा भारतवासी का आघात है। क्योंकि वंदे मातरम सिर्फ हमारा फैमिली का प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरा भारत का प्रॉपर्टी है। वंदे मातरम को जो रेस्पेक्ट करना चाहिए था, वंदे मातरम का जो सम्मान होना चाहिए था, उसका बिल्कुल विपरीत हुआ। और सोनिया गांधी जी, मुझे लग रहा है वो अभी इटालियन कल्चर भूली नहीं। वो इतना देर तक भारत में रह चुकी है, मगर फिर भी वो अपना इटालियन कल्चर भूली नहीं।
8: सोनिया गांधी एज अ फॉरेनर एंड एज एन आउटसाइडर टू स्टार्ट बिहेविंग द वे शी डिड यस्टरडे, आई एम नॉट सेइंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी, आई एम सेइंग दिस एज इंडिविजुअल, इट इज रियली रियली शेमफुल एंड आई कैन ओनली से दैट। आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग मोर देन दैट, अवर नेशनल पार्टी विल डिसाइड, बट फॉर समबडी हु इज अ फॉरेनर हु हैज एम्ब्रेस्ड दिस कंट्री, द कंट्री हैज एम्ब्रेस्ड हर, टू बी so you know shamefully disrespecting the national song that is such a sensitive thing for so many Indian citizens is in my opinion not only disappointing, it is condemnable.
9: Independence Day celebration के दौरान कांग्रेस मुख्यालय में जो हुआ उसको लेकर आपके जो विरोधी हैं बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप बहुत अनकंफर्टेबल थी, ऐसा लगा कि वंदे मातरम को रोकने की कोशिश की गई, कांग्रेस कैसे देखती है इस विवाद को?
10: देखिए, एक तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको इस देश के आज़ादी में कोई रोल नहीं था, उनको कोई मतलब नहीं था। जो आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराते थे बरसों तक, वो सवाल उठाते हैं। और जहाँ तक सोनिया जी की बात है, तो जिस दिन सत्रावसान हुआ था मैं भी था, जो उपराष्ट्रपति जी से औपचारिक जो आदमी मिलने जाता है, चाय पीने जाता है, उसमें मैं भी था। उन्होंने तो कॉम्प्लीमेंट किया था किरण रिजिजू को कि मैं देख रही थी, सो आप पूरा, आपको याद था पूरा, आपने गाया। तो उन कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जिनको प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम है। अगर ये कानून बन गया तो वहाँ भी सब लोगों ने पूरा गाया खड़े होके।
9: तो आप ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में जब वंदे मातरम गाया गया था तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने उसमें भाग लिया था?
10: सब ने भाग लिया था, सभी पार्टी के सदस्यों ने भाग लिया था। कोई भी कानून आएगा, कानून जब बन जाएगा तो उसकी सबको सम्मान करना चाहिए, उसमें कौन सी नई बात है। और कांग्रेस पार्टी पर कोई इस तरह का सवाल खड़ा करे तो ये तो मजाक जैसा लगता है।
9: इसमें माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं है?
10: इसमें क्या माफ़ी मांगना है, और किससे माफ़ी मांगेगा आदमी? वंदे मातरम और जनगण गाने में के लिए कांग्रेस को कोई सिखाएगा?
9: एक आखिरी सवाल, पवन खेड़ा ने कहा कि 1937 में, अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक रेजोल्यूशन है कि सिर्फ दो स्टैंजा गाया जाना चाहिए और कांग्रेस के प्रोग्राम में
10: तो ये प्रोटोकॉल। इसके कानून बनने के पहले तक तो वही सब लोग आते थे, ये वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब कोई कानून बन गया तो हम सबको उसका हिफाजत करना चाहिए।
5: And earlier today, NDTV's political editor Vasudha Venugopal spoke to Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. He slammed Congress Party on the ongoing Vande Mataram row. Listen in to this exclusive conversation.
11: The successful bills of legislative agenda of the government was the Vande Mataram bill. The opposition kept saying that the BJP is trying to manufacture patriotism. Yesterday, what happened in the Congress office was pretty interesting because the song was played out in full, and it seemed like some of the Congress leaders, including Mrs. Gandhi, were not very comfortable with it. The Congress party says that she is only trying to bring a chair for Mallikarjun Kharge. The

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Mahindra unveils the Scorpio Lifestyler pickup truck. Set to reach Indian showrooms by April 2027, it will rival the Toyota Hilux and likes. Expect a price tag of lower than ₹19.79 lakh. On the commercial vehicle side, Mahindra has launched new Blazo truck, a heavy commercial vehicle, promising to maximize fleet profitability. It also guarantees 48-hour uptime. Breaking records for hydrogen internal combustion vehicles, JCB has achieved a speed of 653 kmph on land. Driven by Wing Commander Andy Green at Utah's Bonneville Salt Flats, the record was achieved by the Hydromax Streamliner. Ahead of official debut planned for October 6, Jaguar has revealed the interior of the upcoming Type 01 electric GT. Cabin highlights include four-seat layout divided by a full-length central spine, hidden on-demand screens, and digital rear-view cameras as it gets no rear windscreen. In the bike world, Ducati has launched the updated Monster V2 in India. Prices start at ₹13.99 lakh ex-showroom. At the heart, this machine gets an 890cc V-twin engine, belting out 111 horsepower. The naked Street Fighter is available in three colors and directly rivals the Triumph Street Triple RS.
1: A 2000cc engine and a top speed of 3000 kilometers an hour. No, we're not talking about the Ducati Panigale V2, but maybe its fictional competitor, the David Putra from Augie and the Cockroaches. Now, this is a fictional bike, but there's a man in India who's actually brought that bike to reality. Up next, we get you his story.
2: A motorcycle that exists only in the world of cartoon has now been brought to life. This is Aman's Bajaj Dominar 400 that's transformed into David Putra, the iconic fictional motorcycle from Augie and the Cockroaches. But this wasn't a quick modification. It took Aman nearly 1 year to turn his childhood inspiration into a real rideable motorcycle.
3: डेविड पुत्र को बनाने का आइडिया इसलिए आया क्योंकि इसका क्रेज़ था. जब मैं पहले पुरानी बाइक मॉडिफाई करवा रहा था, पैशन मॉडिफाई करवा रहा था, तब इसका क्रेज़ इतना ज़्यादा था हमारी जेन जी में, तो मुझे लगा कि इस पर हमें काम करना चाहिए, हमें इस पर अपना योगदान देना चाहिए.
2: Aman is a mechanical engineer and that background played a key role in the build. The Dominar was stripped down and extensively reworked with several components designed, fabricated and customized to recreate the proportions and styling of the cartoon motorcycle.
3: क्योंकि डोमिनार की जो चेसिस का जो एंगल वगैरह था, सब कुछ जो है हमें जैसा चाहिए था, रिक्वायरमेंट ही डेविड पुत्र के साथ बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रही थी. या तो डोमिनार मैच करती या बेनली. बेनली का ज़्यादा रेट था इसलिए हमने सोचा कि डोमिनार 400 ले लें.
2: But recreating a fictional motorcycle in the real world comes with its own challenges. Getting the design right was one thing. Making sure the motorcycle remained functional and rideable was another.
3: सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई कि इसको जो है, इसका जो भी फ्रेम है, डेंटिंग का काम सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत उसी आई, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डेविड पुत्र के फोटो या एंगल में नहीं थे, क्योंकि हमें जो है बिल्कुल सेम टू सेम डेविड पुत्र बनाना था, तो हमारे पास ज़्यादा क्लिप्स वगैरह नहीं थे, तो हमें सबसे ज़्यादा जो है अपने दिमाग से ही लगाना था कि कौन सा पार्ट कैसा बनेगा. तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई डेंटिंग इसमें.
2: एंड हिज चाइल्डहुड ड्रीम केम विद अ सीरियस प्राइस टैग. Aman says he has spent close to 10 lakh rupees on the project, making this far more than just a cosmetic modification.
3: इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा खर्चा तो मैं आपको बताता हूँ पहले कि सारा काम आयरन सीट का था. आयरन सीट हमें इतना ज़्यादा महंगा, इतना ज़्यादा मतलब डेंटिंग का कॉस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब आयरन सीट को सेप देने में आया था सबसे ज़्यादा खर्चा. और पूरी जर्नी में मेरा खर्चा इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ कॉस्ट वगैरह मेरा लगा के 10 से 12 लाख का आ गया.
2: After 12 months of work, the result is a motorcycle that looks like it has jumped straight out of animation and onto Indian roads. For Aman, David Putra is more than a modified Dominar. It's a childhood memory recreated with engineering, patience, and a lot of passion.
3: जब बाइक बिल्कुल बनकर तैयार होगी, मतलब जो हेटर थे वो भी फैन बन गए मेरे कि भाई आपने तो रियल में बना दी. उन्हें दिक्कत लग रही थी कि भाई रियल में बना तो देगा, लेकिन यार ये क्या चीज़ चल पाएगी या दौड़ पाएगी या उतनी स्पीड ले पाएगी या जितनी छोटी बाइक लेती है या सुपर बाइक लेती है. तो भाई उनका रिएक्शन जब मैं चलाता हूँ स्पीड में, जब चलाता हूँ तो उनका रिएक्शन देखने लायक होता है कि भाई बंदा मतलब बोल रहा था और बंदे ने करके दिखा दिया. मतलब जो बंदे वो नहीं कर पाते सोचते हैं ड्रीम ड्रीम होता है कि भाई ये भी कुछ हो सकता है, वो उन्हें लगता है कि भाई ये तो सही में.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: 21 days in Kashmir. People have bombarded me, friends, with requests for an unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
3: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
2: They're now India's smallest but possibly the most powerful crime family. Cough syrup has killed at least 25 children. डायकॉट साहब ऐसे मत कीजिए,
4: लोग देख रहे हैं तो कर रहा है।
2: सडनली पीपल आर वंडरिंग अबाउट द वेपनाइजेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट। वी लिव एंड ब्रीथ इलेक्शंस। यू विल नॉट बिलीव योर आईज और इयर्स व्हेन आई शो यू व्हाट आई एम अबाउट।
5: फॉर अ कंट्री दैट हैज फॉट सो मेनी वॉर्स इन द माउंटेन्स एंड एट हाई ऑल्टीट्यूड,
2: वी आर स्टैंडिंग ऑन द इंडियन नेवीज न्यूएस्ट वॉरशिप,
3: द लाइन ऑफ कंट्रोल, शिप अरूर, एनडीटीवी।
0: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Harisha Sehgal.
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
6: Join me, Harisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV.

0: दुनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
1: इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दौरान कांग्रेस मुख्यालय में जो हुआ उसको लेकर आपके जो विरोधी हैं बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप बहुत अनकंफर्टेबल थी, ऐसा लगा कि वंदे मातरम को रोकने की कोशिश की गई। कांग्रेस कैसे देखती है इस विवाद को?
2: देखिए, एक तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको इस देश के आज़ादी में कोई रोल नहीं था, उनको कोई मतलब नहीं था। जो आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराते थे बरसों तक, वो सवाल उठाते हैं। और जहाँ तक सोनिया जी की बात है, तो जिस दिन सत्रावसान हुआ था मैं भी था, जो उपराष्ट्रपति जी से औपचारिक जो आदमी मिलने जाता है, चाय पीने जाता है, उसमें मैं भी था। उन्होंने तो कॉम्प्लीमेंट किया था किरण रिजिजू को कि मैं देख रही थी, सो आप पूरा, आपको याद था पूरा, आपने गाया। तो उन कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जिनको प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम है। अगर ये कानून बन गया तो वहाँ भी सब लोगों ने पूरा गाया खड़े होके।
1: तो आप ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में जब वंदे मातरम गाया गया था तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने उसमें भाग लिया था?
2: सब ने भाग लिया था, सभी पार्टी के सदस्यों ने भाग लिया था। कोई भी कानून आएगा, कानून जब बन जाएगा तो उसकी सबको सम्मान करना चाहिए, उसमें कौन सी नई बात है। और कांग्रेस पार्टी पर कोई इस तरह का सवाल खड़ा करे तो ये तो मजाक जैसा लगता है।
1: इसमें माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं है?
2: इसमें क्या माफ़ी मांगना है, और किससे माफ़ी मांगेगा आदमी? वंदे मातरम और जनगण गाने में के लिए कांग्रेस को कोई सिखाएगा?
1: एक आखिरी सवाल, पवन खेड़ा ने कहा कि 1937 में, अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक रेजोल्यूशन है कि सिर्फ दो स्टैंजा गाया जाना चाहिए और कांग्रेस के प्रोग्राम
2: तो
1: में
2: ये प्रोटोकॉल। इसके कानून बनने के पहले तक तो वही सब लोग आते थे, ये वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब कोई कानून बन गया तो हम सबको उसका हिफाजत करना चाहिए।
3: ഇന്ത്യക്ക് ആ പാട്ടിനെ ദേശീയ ഗാനമായിട്ട് ദേശീയ ഗീതമായിട്ട് പോലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഖണ്ഡിതമായി പറയേണ്ട വേളയിൽ AICC ആസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ വരികളും പാടി, എല്ലാ വരികളും പാടുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയും സോണിയാഗാന്ധിയും എല്ലാം കേട്ടുനിന്നു. കോൺഗ്രസ്സിന് അറിയില്ല എന്താണെന്ന് രാഷ്ട്രീയം, അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ രണ്ടാം സ്റ്റാൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം സ്റ്റാൻസ് മുതലുള്ള ഓരോ വരികളും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ ദേവതകളെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നവയാണ്.
4: Well, the Vande Mataram controversy is not a new political controversy. Ever since the formulation of the Indian Constitution, this debate and discussion has dominated, whether it was the Constituent Assembly debates or the politics after it. Well, you know what the latest incident is, what happened at the Congress Party headquarters and the kind of pot shots that the BJP has been taking on the Congress Party. The Congress Party, of course, has defended itself. But let's listen in from the experts. Joining us on the broadcast is Sanjeev Verma, spokesperson of the BJP. We also have Mr. Sumitra Chatterjee, Bankim Chand's family member and BJP MLA from Bengal. Dr. Nishant Anand, who's the spokesperson of Congress Party, with us on the broadcast. And Tehseen Poonawala, political analyst, with us on the show. Good evening to everyone. Thank you so much for joining us on the broadcast. Dr. Nishant Anand, I want you to open the debate. The BJP has been questioning you and taking pot shots at the Congress Party and saying that the Congress Party did not allow the full version

0: electricity bill paid.
1: Really?
0: Your mobile recharge is done.
1: How?
0: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
1: It's the Mahi way.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality.

0: नाम क्या है आपका सवाल?
1: माय नेम इज अंकित यादव एंड आई वांट टू आस्क फ्रॉम बीजेपी स्पोक्सपर्सन, व्हाई आर यू डिवाइडिंग जेन जी ऑन द बेस ऑफ योर कन्वीनियंस? यू एट द जंतर मंतर प्रोटेस्ट योर फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर सेड दीज आर एंटी सोशल एलिमेंट्स, यहाँ कुछ लोग पावर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, देन यू आर सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स इन झारखंड, यू गाइज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट झारखंड गवर्नमेंट, एंड सेकेंड इज कि व्हाई आर क्रिमिनलाइजिंग एवरीथिंग, गेटिंग क्रिमिनल एक्ट इज नॉट द सोल्यूशन, टॉक अबाउट एजुकेशन रिफॉर्म एंड योर पैनलिस्ट
0: आंसर दैट प्रदीप, व्हाई आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच स्टेट दे बिलोंग?
2: नहीं, हम स्टूडेंट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो छोटा रिचार्ज है विच हैड पॉलिटिकल लीनियज, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं, स्टूडेंट्स की जो जेन्युइन डिमांड थी विच वॉज ऑफ अ सीबीआई प्रोब, हम लोग ने खुद ने सीबीआई प्रोब ऑर्डर करी, रेजिग्नेशन, वी टुक द अकाउंटेबिलिटी एंड वी ब्रॉट अ टास्क फोर्स अंडर नंदन नीलकनी एंड वी ब्रॉट अ मोस्ट टफेस्ट लॉ ऑफ पीपल लीग फॉर अ डेटरेंस, पॉइंट नंबर वन. अगर हमारी नीयत खराब होती सो वी वुड नॉट हैव टेकन इट, वी आर इन ऑपोजिशन इन झारखंड, देयर वी कैन नॉट एक्ट, देयर दे हैव टू ऑर्डर अ सीबीआई प्रोब, दे हैव टू आस्क फॉर एन एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन. प्लीज नोट, दोज हु हैव स्टोन्स इन देयर हैंड दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टूडेंट्स, वी नीड टू डिफरेंशिएटेड, दिस इज वॉट वी आर कॉलिंग आउट, दैट्स वेयर ऑन एफआईआर देयर वाज 608 criminals, people in as having stones are not representative.
0: Okay, what's your
2: students.
0: Question?
3: Hi, good afternoon, good evening gentlemen. I'm sure my question is very simple and it's to all of you. Hum log sawal galat utha rahe hain, main ye keh raha hu ki जब पेपर लीक होता है उसके बाद जितने लोगों की, जितने बच्चों की जिंदगियां जो आपने वेस्ट कर दी, वो साल वेस्ट हो गया, व्हाट अबाउट दैट? व्हाई कैन नॉट दैट हैपन? और आपने चलिए ठीक है पेपर कैंसिल कर दिया, व्हाई नॉट कि आप वो पेपर वापस करवा सको इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम सो दैट उनका टाइम ना वेस्ट हो. सेकेंडली द रिजल्ट्स दैर, आई मीन horrendous time, आप उसको एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल लगा के आप रिजल्ट्स ला के दे रहे हो, what about these people and why cannot we hold people in public office accountable for the same?
2: It's a very good question. इसीलिए रीनीट 47 days के अंदर हुआ था, इसीलिए 22 lakh students qualified and I'll tell you, I agree with जो आपने problem बताया, हमारे तरफ वो problem नहीं है, ये आप केरला के अंदर देखिए, इन केरला 40 days से जिनको अपॉइंटमेंट हुआ है उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला है एज यूथ एज टीचर्स, बिकॉज उनको भर्ती प्रक्रिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी हैज नॉट गिवन इट. सो माई when इट केम टू अस, वी डिड द एग्जामिनेशन नॉट इन एन ईयर इन 47 डेज, when इट केम टू अस वी इंश्योर्ड दैट दोज हु हैड डन लीक विच वर सर्टन इन्विजिलेटर्स दोज आर बिहाइंड बार्स. स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी हाफ हार्टेड एंड कैन नॉट बी सिलेक्टिव इज माई ओनली प्रॉब्लम.
0: ओके, एंड व्हेन दिस डिस्कशन इज हैपनिंग द सेंटर नीड्स टू टेक एक्शन. अनमोल पवार, नाउ द बीजेपी इज सेइंग कि सेंटर में हमें जो करना था हमने एक्शन ले लिया, हमने रीनीट कराया, हम लॉ लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आर the opposition party is running away from a debate because then you will have to answer questions about Punjab also. What has happened? The Aam Aadmi Party government has had to face embarrassment after the Punjab and Haryana High Court has put a stay on the process to appoint 454 pharmacy officers in the state till the next date of hearing, which is the September 17th. In addition to that, multiple media reports, in fact, your chief minister himself also spoke about how at least one paper leak has taken place. What are those six paper leaks that have been reported? Let's quickly take you through that again. The reminder, the pharmacy officers recruitment exam of 2026. Before that, you would had the PSSB Group B officers exam in 2025. You also had the agriculture development officers exam in 2024. And all of this put together, total of six leaks are being alleged. Now even Punjab and Haryana High Court is saying it. Is this the reason that you won't be too keen? Because एक उंगली उधर होगी तो तीन उंगली अपनी तरफ भी होगी. एडवोकेट,
4: सी द बीजेपी एंड द गोदी मीडिया नोज वेरी वेल दैट नॉट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ देयर इज नॉट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ पेपर लीक इन पंजाब इन लास्ट 5 years of Bhagwant Mann government. The reason why they are trying to defame Punjab is because Punjab has moved from 27 to number 1 in the field of education. In Niti Aayog school education quality report, the central government declared us number 1. National Achievement Survey, Punjab number 1. Ministry of Education Performance Grading Index, Punjab number 1. National Green Schools Program, Punjab number 1. And Parakh Rashtriya Sarvekshan, Punjab number 1. That is the precise reason why they are defaming Punjab.
0: Okay. Secondly, sir, now coming to education, yes, board, yes, exam leak question come. Papers distributed. Maybe, again, class 12 students to take exam
4: that.
0: A third time.
4: I am answering on
0: this
4: that.
0: Was printed in the Indian Express in Chandigarh.
4: Can I answer?
0: Then
4: that?
0: On the 14th of March 2023, PSTET 2023, day after goof up in question paper, two GNDU professor are suspended. This happened in Amritsar.
4: Can I answer
0: ADU
4: that?
0: Recruitment exam,
4: yes. Can I
0: in Punjab
4: that?
0: Under paper leak cloud, opposition tears into state government.
4: Please give me 60 seconds. Yes. I'll answer all that. First of all, she referred to pharmacy exams. There's a difference between paper leak and cheating. The counter-intelligence unit of Punjab and Punjab police, they busted a cheating racket and

0: There's no court finding, not a single observation. I challenge you here on your show. मैं माफी मांग के जाऊंगा यहाँ पे अगर आप मुझे कोर्ट के ऑर्डर में दिखा दें कि कहाँ कोर्ट ने ये कहा है कि चीटिंग हुई है. Secondly,
1: यहाँ लीक हुआ है. वो चीटिंग कह रहे हैं, लीक नहीं हुआ है.
0: लीक नहीं हुआ. Secondly, you refer to PSSB exam. Here's the High Court order which said High Court clears Punjab senior assistant exam rejects paper leak claim. माफी मांगो. Secondly, you referred to PSTET. PSTET, the official order of Punjab said it was not a paper leak. Printing mistake in question paper. माफी मांगो. अभी मांगना माफी यहाँ पे.
1: नहीं, वो तो यही कहेंगे ना. वो थोड़ी ना कहेंगे. नहीं, official order will not say कि हाँ जी leak हुआ है. वो तो कहेंगे कि printing mistake है.
0: मतलब आप मीडिया के report पे विश्वास करोगे? जो मीडिया आज की डेट में सरकार की दलाली कर रहा है, आप उसकी रिपोर्ट पे विश्वास करोगे?
1: सेकंडली, अभी
0: आपने कहा पीएसटीटी, रुकिए ना,
1: खुद मीडिया की रिपोर्ट लेकर के आ रहे हो, सबको दलाली की बात कर रहे हो,
0: क्योंकि वही मीडिया की रिपोर्ट आपको भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. द पीएसटीटी विच यू आर रेफरिंग टू, जस्ट अ मिनट, द पीएसटीटी विच यू आर रेफरिंग टू, that PSTET exam, it was not a paper leak, it was administrative lapse on one of the official, that's why to ensure transparency we cancel the exam.
1: Okay,
0: to aapko maafi mangni chahiye ya Punjab ke bare mein jhoot bolne ke liye?
1: Okay,
0: without any credible evidence you are leveling baseless allegation.
1: Okay,
0: for that you need to apologize.
1: Okay, very
0: quickly, agar aapne himmat hai to hame dikhao court ka order jahan likha
1: hai. Theek hai, very quickly Pratik Bhandari respond to this. Are bhai, let him respond na.
0: Theek hai,
1: I'm very happy that you've got your 30 second Twitter clip which all of your followers can upload now.
0: It's about exposing you.
1: दिखा दिया उसको, धूल चटा दी उसको, मिट्टी में मिला दिया.
0: झूठ बोला ना आपने, अरे सर पेपर दिखा दो ना, मुझे गलत साबित कर लो. 30 सेकंड की क्लिप आप बना लेना.
1: If you will give
0: आप
1: me,
0: बना लेना 30 सेकंड की क्लिप.
1: Advocate Anmol Pawar, you know, you are saying it wasn't a leak, it was an administrative lapse. Now, tell it to the students who had to suffer because of the administrative lapse, and I'm sure they'll feel very happy कि अरे leak की वजह से नहीं cancel हुआ, administrative lapse हो गया था.
0: आप बता दो कि paper leak और administrative lapse एक ही होते हैं क्या? इन्हीं students को बता दो.
1: ठीक है.
0: और नहीं होते तो माफी मांगो.
1: फिर exam तो cancel हुआ ना? Exam तो cancel हुआ ना?
0: Paper leak हुआ क्या?
1: Exam तो cancel
0: हुआ क्या? Paper leak नहीं हुआ ना?
1: Paper leak नहीं हुआ.
0: झूठ बोलो और चलिए. ठीक है, क्या तरीका है?
1: Paper leak की वजह से
2: आम आदमी पार्टी से आप कोई सच की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि केजरीवाल जी अपने बच्चे की सर की झूठी कसम खाए तो किसी चीज को नहीं मान सकते.
0: मोदी जी कहते थे ना भ्रष्टाचारियों को आने नहीं दूंगा.
2: मैं केजरीवाल जी की क्लिप
0: कहते थे भ्रष्टाचारियों को.
2: मैं केजरीवाल जी की क्लिप प्ले कर देता हूँ, सुन लो.
1: ओके, लेट्स नॉट मेक दिस पर्सनल अबाउट व्हाट ही सेड.
2: क्या बोल रहे हैं जो कह रहे लीक हुआ है?
0: मैं भी प्ले करूंगा.
2: अभी इतना फड़फड़ा क्यों रहे आम आदमी पार्टी के?
1: फर्स्ट यू प्ले फॉर 30 सेकंड्स, देन तब तक आप क्यू करके रखिए, दोनों चलाइए.
3: एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टेस्ट का, कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया. आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर,
2: कल पेपर में गड़बड़ी हुई, लीक हुआ, हमने इन्विजिलेटर को हटाया, पेपर कैंसिल कर दिया. अगर लीक नहीं हुआ तो पेपर क्यों कैंसिल किया भैया?
1: पर लीक नहीं हुआ ना, गड़बड़ी हो गई, लीक नहीं हुआ.
2: अब देखिए आम आदमी पार्टी के डिक्शन में अलग होता है, कुछ नहीं समझ सकते. शीशमहल में बैठते हैं इनको नहीं बच्चों का पता.
1: अनमोल पवार,
2: सुनिए, मैं हाईकोर्ट का लाया हूँ.
1: चलाइए अनमोल,
2: हाईकोर्ट का लेके आया हूँ. हाईकोर्ट सुनिए, हाईकोर्ट का एक अलग ऑर्डर है. हाईकोर्ट ये कहता है,
0: हाईकोर्ट ये कहता है,
2: ही इन्फॉर्म हाईकोर्ट से
0: अगर पेपर लीक लिखा होगा
2: तो द एंटायर प्रोसेस ऑफ फार्मेसिस्ट,
0: पेपर लीक दिखाओ कहां लिखा हुआ है,
2: ऑफिसर एग्जामिनेशन
0: पेपर लीक कैंसिल तो माफी मांगो.
2: इंटरस्टेट रैकेट, इंटरस्टेट रैकेट
0: बस किया है. पर आदमी पेपर लीक और चीटिंग में फर्क होता है?
2: ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी है कि इनके अंदर भी लीक हो जाता है. भ्रष्टाचारी पार्टी है.
1: ओके, गिव इट बैक.
2: फार्मेसी लीक, एडीओ लीक, रिक्रूटमेंट लीक, लीक लीक लीक, इसीलिए पंजाब के अंदर 1600 प्रिंसिपल्स में से 900 की पोजीशन थी वैकेंट. दैट इज द ट्रुथ. दैट इज द ट्रुथ. 20% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पंजाब, इज द हाईएस्ट इन द कंट्री.
1: ओके, लेट हिम रिस्पोंड देन. आई थिंक
0: अभी एक सेकंड मैं ले रहा हूं जवाब. एक सेकंड रुकिए. अभी भाजपा के प्रवक्ता ने इससे पहले कहा, जब भाई ने सवाल पूछा, बहुत जायज सवाल था, इन्होंने कहा हमारे यहां प्रॉब्लम नहीं होती. अरे उत्तर प्रदेश में तुम्हारे पेपर लीक हो रहे हैं वो तुम्हें नहीं दिखता, तुम्हारे हरियाणा में पेपर लीक हो रहे हैं वो तुम्हें नहीं दिखता. दिखता, तुम्हारे गुजरात में पेपर लीक हो रहे हैं वो तुम्हें नहीं दिखता, वो विजुअल हटा दिए उन्होंने, कहो दिखाएं, विजुअल हटा दिए उन्होंने।
2: अरे आम आदमी पार्टी ने जैसे अखबार को बंद करा था पंजाब के अंदर, अपने मीडिया से रिपोर्ट करिए, ये लगता है राजनीति छोड़ के, राजनीति छोड़ के जो है
0: जा रही है, उन्होंने कहो दिखाएं, नेशनल लेवल पे जो है पेपर लीक हो रहे हैं
2: छोड़ के इनका प्रोड्यूसर
0: बने, 150 साल जो है इनके राज में,
2: ये सच्चाई है, मेरा निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी जो है आपका प्रवक्ता छोड़ के जा रहा है, इन्हें मांगो कौन प्रोड्यूसर बने।
1: ओके ओके, वेट वेट वेट वेट फॉर द माइक, वेट वेट, then I'm coming to you.
4: In India, we want equal standards of accountability. That is the question, sir. That is the question. आपके schools के, in your schools in Punjab also, your political leaders, they post on Twitter several things about the schools and the bad conditions of schools in UP. As you also, you took a flyer and you show कि देखो आपके यहाँ भी ऐसा होता है, sir. Where is the equal standards of accountability? Why don't you guys do something about your schools also?
0: Sir, let me tell you, we are the first government in the history of this independent India
2: which education,
0: under whose regime, okay. 25% of the budget was educated by
2: education minister and Sharaf Aminani was a similar person.
0: Ab aap inhe nahi rokoge to phir aise hi chalega debate. One at a time. Minister of
2: education minister.
0: Hey, aap inhe nahi rokoge na. Ye dar gaye.
2: Ye Google bhi keh raha hai ki leak aur cheating dono exam fraud hi hote.
0: Sachai sunni padegi na, isliye dar gaye. The reality is, देखिए लगातार ये डर गए, हमेशा ऐसे ही डर जाते हैं, ये हमेशा ऐसे ही डर जाते हैं, जिसके पास कुछ होता नहीं वो इंटरप्ट करता है।
1: आंसर आंसर,
0: देखिए मैंने आपको बताया किस तरह हमने पंजाब को नंबर वन पे लेके आए शिक्षा के क्षेत्र में ड्यूरिंग दिल्ली गवर्नमेंट ऑल्सो, ड्यूरिंग दिल्ली गवर्नमेंट व्हेन आम आदमी पार्टी वॉज इन गवर्नमेंट इन दिल्ली, वी एंश्योर्ड दैट दिल्ली कम्स नंबर वन एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न।
4: सेकंडली, आर यू इवन अवेयर अबाउट द ड्रग अब्यूज इन पंजाब योर Mr. Kejriwal, he said very particularly, he said one thing, हमको पावर मिला आके दिखाओ, हमको पावर में लाने के बाद देखो कैसे हम सारा ड्रग हटाते हैं। Sir, if you do have even realized that even after coming to the power, the drug situation in Punjab has even gotten worse. There is nothing to
2: respond.
1: Okay, respond, respond. Yes, yes.
0: Can I respond? Can I respond? Can I respond? Can I respond? आप जो है ये बदतमीजी है, ये
2: बदतमीजी है,
0: फरवरी 2026 का आप अपना ट्विटर हैंडल देना, अभी चुनौती दे रहा हूँ आपको मैं, 40,000 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर किए हैं, 90,000 से ज्यादा ड्रग एडिक्ट को अरेस्ट किया है, और इनके बीजेपी के सीनियर नेता जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने कहा है कि पंजाब में ड्रग की स्थिति बेहतर हुई है, पंजाब में ड्रग की कमर तोड़ी है हमने, और आप अपना ट्विटर हैंडल देना, आई विल टैग यू,
2: इतने लोगों को एफआईआर करेगा
0: एक्सपोज यू ब्रदर,
2: एक ही शो पे आम आदमी पार्टी सब पे एफआईआर कर रही है,
0: यू डोंट नो द रियलिटी एंड आई विल प्ले द वीडियो राइट हियर, आई पंजाब इज स्टिल नंबर
1: 1। ओके अनमोल जी, यू टेक 30 सेकंड्स टू प्ले द वीडियो, लेट्स टेक अ क्विक क्वेश्चन फ्रॉम दिस जेंटलमैन, देन हर्षवर्धन त्रिपाठी एंड देन अनीश। यस
5: मैम, माय नेम इज अंशुल सिंह। सर, पंजाब इज स्टिल नंबर 1 इन ड्रग यूज इन होल इंडिया सर।
1: ओके फाइन, जस्ट अ सेकंड हर्षवर्धन।
6: उन्होंने जो अभियान चलाया 31 दिसंबर तक, पहली बार 31,000
2: कुछ भी जनरेट करने का ऐसे दिखाते हैं, वैलिडेट करो वीडियो को, वैलिडेट करो वीडियो को, वैलिडेट करो वीडियो को, वैलिडेट करो वीडियो को, वैलिडेट करो वीडियो को।
0: मनोहरलाल पुरोहित लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो रहे हैं,
2: फेक एआई जनरेटेड वीडियो है, फेक एआई जनरेटेड वीडियो है। अच्छा, ये फेक एआई जनरेटेड
1: truth is that that right now what you saw over here pretty much mirrors what we are seeing in our parliament as well. The only difference is that the parliament doesn't even function. When it does, this is what we see happening. Harshvardhan Tripathi, then Anish Gawande, then I'm coming right back to you. Harshvardhan.
7: मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि अनमोल को गुस्सा नहीं आएगा, कांप रहे थे गुस्से से, ठीक
2: नहीं,
7: एक मिनट,

0: Just a second. Let's clarify this. What is the fake news?
1: Update this video.
0: One second. What is the fake news? What is the fake news?
2: He said that the Punjab LG said that Punjab has done excellent on drug prevention.
1: I challenge you. Yes, I'm right.
2: It's a fake
1: news. I challenge you.
0: Why? Why do you say that?
1: Video, Bhai Sahab.
0: What has the LG said?
2: Because when I said and what put it on air and said it's no, he has put a fake news.
1: I challenge this guy. He's a liar. He's a liar. He's lying on Apple Leaks. He's lying in the
0: What is your question? What is your question? Young lady, yes.
3: You can't rely on AI.
4: अरे मैं एआई पे नहीं, मैं तो उस पे कर रहा हूँ, खुद गवर्नर के स्टेटमेंट पर रिलाय कर रहा हूँ, मेरे भाई गवर्नर के स्टेटमेंट पर रिलाय कर रहा हूँ। इधर आ जाओ, पैनल में आ जाओ, तुम भी पैनल में आ जाओ।
0: ओके ओके, यू डोंट हैव अ माइक। यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन?
5: गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम महक। सर, आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आई जेन्युइनली एग्री टू व्हाट अनीश सर सेड कि ताली दोनों हाथों से बजती है। सो व्हेन आर वी प्लानिंग टू लिसन टू द वॉइसेस दैट हैव बीन अनहर्ड? व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव टू हु डिड सुसाइड? व्हाट अबाउट द पेरेंट्स हु हैव बीन क्राइंग? व्हाट अबाउट द kids who have been working hard, who have been going out for drop years? When, what about the protests? What about the students who are getting killed? And what about now? When are we expecting the change? That is from all the panelists and especially to the central government, because they are in power.
0: Anish,
6: when politics becomes a circus, the people of India suffer across party lines. And this is where the BJP strives to ensure that they do not provide accountability. I support the students of Jharkhand. When they went for a march and they were tear gassed and water cannoned, it was wrong. But was it correct for the Delhi police to do that on the students of Delhi? If it was not correct in Jharkhand, is it not correct in Delhi? And if it is not correct in Delhi, why has accountability still not been arrived at? How many police officers have been sacked? Do we know that there has been a pellet gun used or not, and what the responsibility is? How did a lathi reach a young woman's neck? A neck to break a carotid artery and land her in the ICU? Listen, the Home Minister must answer this question. If I am conceding that the Jharkhand protests are genuine and that the water cannoning was wrong, then what is the cowardice of the Home Minister today? I am ashamed to have him as my Home Minister because he does not answer.
0: All right, so the Home Minister should answer for what happened in Delhi. Who should answer for what happened in
6: the
0: Jharkhand?
6: The Home Minister of Jharkhand must answer for what happened in Jharkhand.
0: Which is also the Chief Minister.
6: Absolutely.
0: The Home Minister is the Chief Minister.
6: The Chief Minister must answer for what has happened in Jharkhand, and I support you in this demand.
0: But you are literally the first person who is asking for the Chief Minister to answer for the water cannon.
6: Absolutely.
0: Nobody has raised issue in Parliament
6: but
0: till
6: good
0: day.
6: Young people have raised this.
0: Who
6: because
0: has
6: Parliament
0: it?
6: Has not been allowed to function.
0: But nobody even outside.
6: Let the
0: Today everyone is talking
6: Padmaja,
0: about the Home
6: if the
0: Minister's
6: ABVP,
0: answer.
6: If the ABVP,
0: nobody has asked Hemant Soren
6: if the
0: to
6: ABVP,
0: answer.
6: I congratulate the ABVP for standing with the students of Jharkhand. I do not know why they do not stand with the students of Maharashtra in the TET paper leak.
0: Okay, very
6: this
0: quickly.
6: Kind of hypocrisy I cannot understand.
0: Harshvardhan Tripathi, Harshvardhan ji, then I'll come.
7: Padmaja, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई सो नहीं रहा है, जगे हुए सोने के एक्टिंग कर रहा है, तो उसको आप जगा नहीं सकते।
0: कौन सा?
7: और अगर कोई गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट कह दे कि हमारे यहाँ कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है, तो ये तो कहिए कि बड़ा कृपा की, नहीं तो अनमोल पवार इसके बाद कहते हैं कि हम डिफेमेशन कर देंगे।
4: बिल्कुल करेंगे जी।
7: बाकायदा बाकायदा, अब पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात, नाराज मत होइए, पूरी बात होने
1: दीजिए।
7: और अनमोल पवार झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, पूरे
1: एविडेंस दिखाओ, मुझे गलत सर
7: कंप्रोमाइज हो गया।
1: एविडेंस दिखाओ,
7: जहां चीटिंग हुई बिना पेपर लीक के।
1: अरे चीटिंग और पेपर लीक में फर्क नहीं पता आपको?
7: और अगर ये जानकारी
1: चीटिंग और पेपर लीक में फर्क नहीं पता इस उम्र में?
6: सर, मैं अग्री करता हूँ, मुझे एक ही सवाल का जवाब चाहिए।
7: सर वहाँ खड़े हैं जहाँ सरकार बेशर्मी पर आमादा है,
6: सर
7: जहाँ सरकार
1: आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए
7: और झूठ बोलने
1: युवाओं के लिए, आप युवाओं को गुमराह कर रहे हो।
0: शर्म आपको आनी
1: चाहिए हर्षवर्धन जी।
0: When it comes to the comparison,
1: पेपर लीक में आपको फर्क नहीं पता, आपका चश्मा लग रहा है, इससे वरिष्ठ आदमी हो आप, भाई गजब बात है, गजब बात है।
0: अनमोल जी प्लीज,
7: अमृतसर के एक
1: क्योंकि आपको युवाओं की चिंता नहीं है,
7: प्रदीप एक मिनट,
1: क्योंकि आपको युवाओं की चिंता नहीं है, राजनीति के लिए आप देश में देखते हो।
7: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को पंजाब सरकार ने क्यों हटाया? बच्चों ये ध्यान से सुन लो, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर भुल्लर साहब को क्यों हटाया?
1: नहीं एविडेंस दो।
7: अरे जवाब दो ना भाई।
1: नहीं नहीं भागो,
7: अभी मैं जवाब मांग रहा हूँ। भाग रहे हो तुम, भाग रहे हो, बेईमान सरकार है,
1: साबित करो,
7: बेईमान सरकार है, बच्चों को हटाया,
1: साबित करो।

0: quite apparent.
1: झूठ बोल रहे हो, झूठ सबूत दिखाओ.
0: It is quite apparent to everyone watching over here and watching at home on television also.
1: सबूत दिखाओ, सबूत. अरे पेपर पे सबूत दिखाओ ना. ऐसे झूठ बोल के नहीं मारने देंगे.
0: When Mr. Pawar is a slightly calmer person,
1: सबूत दिखाओ.
0: I'm going to come back and ask that question. Very quickly ask your question.
2: सर, आम आदमी पार्टी से अभी आप ही बोल रहे हैं कि चीटिंग और पेपर लीक में अंतर होता है. सर, वैकेंसी कितनी आती है? 300 वैकेंसी आती हैं. अगर चीटिंग से 300 वैकेंसी भर गई तो लीक और उसका क्या अंतर होगा? आप इसका जवाब दीजिए मुझे.
3: सेम भ्रष्टाचारी.
1: देखो, अरे तुम महाभ्रष्टाचारी हो, तुम महाभ्रष्टाचारी हो.
0: उनको जवाब देने
1: का महाभ्रष्टाचारी. सारे भ्रष्टाचारियों के लिए तुम रेड कार्पेट. सारे भ्रष्टाचारियों के लिए तुम रेड कार्पेट.
4: सर, ये पूरे पैनल से मेरा
1: जवाब दिए देने देंगे.
4: ये पूरे पैनल से मेरा क्वेश्चन है.
1: कहो इन्हें, जवाब दे रहा हूँ. देखो, आप मुझे बताओ, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो भाई.
2: जी जी.
1: आप मुझे बताओ, पेपर अगर कोई यहाँ पे आता है पेपर देने और उसके पास कोई पर्ची पकड़ी जाए और फिर उसका पेपर कैंसिल कर दिया जाए, पंजाब पुलिस काउंटर इंटेलिजेंस मिलके उसे रोक दें, तो क्या वो पेपर लीक होता है? पेपर लीक होता है जब पेपर देने आओ उससे पहले पेपर आउट हो चुका हो, लोगों के पास हो. चीटिंग आप ये कह रहे हो कि चीटिंग अगर कोई कर रहा है तो उसे करने दे, चीटिंग पकड़े ना. ये कह रहे हो आप?
2: ये बताइए सर,
1: बताओ आप. अगर ये कह रहे हो आप,
2: अगर वो चीज प्रूव नहीं होती,
1: रोका है हमने चीटिंग करने वाले को. आप
2: चीटिंग क्या बात कर रहे हैं सर? पैसा लेकर के चीटिंग करवाते हैं
1: आप? बताओ ना,
2: पैसा लेकर के सर चीटिंग करवाते हैं?
1: चीटिंग रैकेट बस्ट किया है, चीटिंग रैकेट बस्ट किया है हमने.
0: बोलो बोलो बोलो.
1: आप भ्रष्टाचारी, तुम हो महाभ्रष्टाचारी. तुम्हारे राज में लगातार पेपर लीक होते हैं. तुम्हारी हिम्मत नहीं है.
0: डोंट स्पीक इन द
1: प्रदेश में. मुंबई दही जम जाती है.
0: व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू शो?
1: मध्य प्रदेश पेपर लीक में मुंह में दही जम जाती है. राजस्थान पेपर लीक में मुंह में दही जम जाती है. बिहार पेपर लीक में मुंह में दही जम जाती है. वहाँ के बच्चे बच्चे नहीं तुम्हारे. अरे झूठे आदमी, माफी मांगो.
0: ओके,
1: भ्रष्टाचारी हो, माफी मांगो.
0: आई थिंक ही हैज अ रेलेवेंट पॉइंट हियर.
1: बात करने वाला
0: हूँ. ही हैज अ रेलेवेंट पॉइंट हियर. व्हेन क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड टू हिम ऑन पंजाब, the same questions and he has got all of these printouts.
3: Accept to kare na, Punjab to manne ko taiyar nahi.
1: Paper leak ho na, evidence do.
3: Evidence do kagaz do. Sarkar evidence.
1: Aap jhoote aadmi ho. Aap maha jhoote aadmi ho. Bhajpa ki baat pe
5: bhagwan ka bhala
1: hai. Evidence kyu maan le?
3: Jhoot
1: main keh do, aap jhoota hi bol
3: le. Kamal hai, kamal
0: hai. Ask you Mr. Pawar,
1: evidence ke keh do ki ye bhajpa ke pravakta ban ke yahan baithte hain, ye bhajpa ki dalali karte hain, to kya wo theek hoga?
0: Let me ask you a question. Let me ask you a simple question.
1: Credible evidence ke main kaise kehta hu?
3: Vegan.
1: You are the biggest corrupt.
3: Acting like a
1: vegan. You are the biggest corrupt.
3: He is a hooligan.
0: Let me ask you a simple.
1: The future of the students of this country.
0: Mr. Pawar. Mr. Pawar.
1: You have destroyed the future of the students of this country.
3: Punjab ke log.
1: Aapki besharmi.
3: Khatarnak.
1: Aapki besharmi bhi khatarnak hai. Maa jhoot bolti
0: hai. On behalf of the students.
1: Ghamandi aadmi. Sharam aani chahiye aur maafi maangni chahiye.
3: Sharam aata hai.
1: Tumhare jaisa besharm aadmi maine nahi dekha. Jisne yuvaon ka bhavishya par baat ki.
0: Sir, on behalf of the students, let me ask you one question and one question only. Have any exams been cancelled in Punjab because of irregularities? Yes or no?
1: Tell me, first tell me, because initially you started with the fact that there were 6 paper leaks in Punjab. Aapne ek bhi evidence nahi dikhaya. Aap high court order mein nahi dikha paye kahan paper leak hua. Ek single evidence nahi dikhaya. To the contrary, I showed evidence. Pehle maafi mango ke paper leak nahi hua.
0: Now let me repeat my question. I understand the demands of social media.
1: मेरा माइक गुंडे
0: दूंगी.
1: मेरा माइक मत छीनो.
0: दूंगी
1: मेरा माइक.
0: अरे सर, डेफामेशन के बाद आप कहीं मेरे ऊपर अच्छा चलो एक बार और मिल करके भाईचारे से एक बार और फिर से सवाल पूछते हैं. क्या पंजाब में कोई भी एग्जाम इरेगुलरिटी की वजह से कैंसिल हुआ है, हाँ या ना?
1: आपने 6 बार झूठ बोला, आप माफी मांगोगे हाँ या ना? हाँ या ना बताओ. आपने झूठ बोला, माफी मांगोगे हाँ या ना?
0: चलो
1: बताओ, मांगोगे क्या माफी?
0: आई थिंक इट इज अपेरेंट एवरीवन वांट्स टू जंप. प्लीज प्लीज. ओके, आई विल गिव 30 सेकंड्स.

0: no matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: New rules of engagement.

0: controversy is unfortunate. Okay. Everybody must just stand and see why there should be any problem. This is the spirit we have been carrying since the freedom struggle, and up till now we have become such a big, successful democratic nation. We should celebrate. Why should we have objection?
1: All right, let's cut across to some latest news coming in. And this is the outrage over Vande Mataram row. It's spilling onto the streets with BJYM workers holding a torch rally in Siliguri against Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge. The protest, of course, questions the Congress party leadership over the alleged disruption of Vande Mataram. The full rendition when it was being sung, when it was being played at the Congress party headquarters. BJP alleges it was interrupted by the Gandhis. So now the Yuva Morcha of the BJP is taking out a march in Siliguri against it. Some other latest news coming in. The NLSIU students, they backed the Nalsar protest. They opposed CGI Suryakant at the convocation. They cite BCI's now withdrawn blackball order. And these students express strong disapproval. They say that they stand in solidarity with the Nalsar student and demand an apology with the Bar Council of India. You remember this entire controversy when the Bar Council of India had given a notice that none of the Nalsar students are going to be enrolled as advocates because they boycotted the presence of the Chief Justice of India at the convocation. Following massive outrage that erupted from the Bar, from the members of the Bar, from the members of the judiciary and also from the students, the Bar Council of India within an hour withdrew the order. And now yet again we have another student body which is boycotting this. Ritu with us on the broadcast. Ritu, give us more details.
2: Well, of course, as you rightly pointed out, you have the law students here in Bengaluru who have taken up this whole matter as well up in the arms and have been up in the arms demanding that this is at any cost not fair at all. They've been in fact demanding. They in fact have placed various demands including that of an apology as well, withdrawal too again. But however, needs to be seen because for the convocation as an event, how would really things pan out in the coming days? That is something that we'll have to wait and see. Back to you.
1: Thank you, Ritu, for getting us all those details. We'll of course keep coming back to you for more. A gunfire incident was reported at Varanasi Airport after a passenger's licensed pistol accidentally went off during a security check, injuring two security staffers. According to police, the passenger identified as Kamlesh Rai from Azamgarh was travelling to Mumbai and had already declared his licensed 7.62mm pistol. During the standard frisking and security check by CISF and airline staff, a round in the chamber reportedly went off accidentally, injuring two ground staff employees. Both injured staffers are said to be stable and are receiving medical treatment.
3: Kamlesh Rai ji, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो Air India Express की फ्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे. इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल, उसको पहले से डिक्लेयर किया है. जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार CISF और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी, तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए दो ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं.
4: घटना बस वही हुई है कि डिक्लेयर्ड वेपन को हम लोगों को स्क्रीनिंग करना होता है. उसी में पैसेंजर ने बोले कि इसे ये अनलोडेड कंडीशन में ये देख लीजिए. और देखने के लिए वो किए, तब तक मैं गोली छूट चुका. उनको ये पता नहीं कि मालूम था या नहीं था, वो पैसेंजर जाने, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो अनलोडेड है या अनलोडेड है. वो अनलोडेड कंडीशन में दिखाने के लिए वो ट्रिगर दबा दिए.
5: घटना सर यही हुई कि हम लोग स्क्रीनर है आई क्लास में, तो हम लोग का वेपन आते हैं तो डिक्लेयर वेपन ओजी पे हम लोग करना है. बट पैसेंजर भी आए थे, एयरलाइन वाले भी आए थे. पैसेंजर ने जस्ट टोटल फिजिकल जो भी है वो ओजी के डेस्क पे रख करके वो करने लगे. पहले उन्होंने मैगजीन निकाला, देखा, प्लस उसमें लोडेड थी. उन्होंने ट्रिगर नीचे की तरफ दबा दी. उन्हें लगा कि मे बी नहीं हो, या क्या पता वो गुस्से में किए हों, कुछ भी इरिटेट हो करके कि हाँ इसमें एमिनेशन है, ये लोग इरिटेट करते हैं, ये भी हो सकता है. उन्होंने जस्ट नीचे में तुरंत विद इन सेकेंड ही ट्रिगर दबा दिया.
1: All right, let's cut across to some latest news coming in. Annamalai says few TVK ministers have started to get percentage on tenders. Says he has audio of the few ministers saying they won without giving money to voters, but we gave money for votes. So we need to 2-4%. He has urged the chief minister to give focus on delivering non-corrupt governance.
6: மறுபடி ஆரம்பிச்சிருக்கு, பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். கரப்ஷன் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் கரப்ஷனுக்கு எதிராக இருப்பது உண்மைதான், அதையும் நாம் பார்க்கின்றோம். டெண்டர் பெரிய பெரிய டெண்டர்ல வாங்கல, இப்ப சில அமைச்சர்கள் இப்பதான் வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அவங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம வந்துட்டாங்க. சில அமைச்சர்கள் சொல்றாங்க, எங்கிட்ட ஆடியோவே இருக்கு, அவங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம வந்துட்டாங்க. தம்பி,

0: it. Why should we have objection?
1: All right, let's cut across to some latest news coming in, and this is the outrage over Vande Mataram row. It's spilling onto the streets with BJYM workers holding a torch rally in Siliguri against Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge. The protest, of course, questions the Congress party leadership over the alleged disruption of Vande Mataram. The full rendition when it was being sung, when it was being played at the Congress party headquarters. BJP alleges it was interrupted by the Gandhis. So now the Yuva Morcha of the BJP is taking out a march in Siliguri against it. Some other latest news coming in. The NLSIU students, they backed the Nalsar protest. They opposed CGI Suryakant at the convocation. They cite BCI's now withdrawn blackball order. And these students express strong disapproval. They say that they stand in solidarity with the Nalsar student and demand an apology with the Bar Council of India. You remember this entire controversy when the Bar Council of India had given a notice that none of the Nalsar students are going to be enrolled as advocates because they boycotted the presence of the Chief Justice of India at the convocation. Following massive outrage that erupted from the Bar, from the members of the Bar, from the members of the judiciary and also from the students, the Bar Council of India within an hour withdrew the order. And now yet again we have another student body which is boycotting this. Ritu with us on the broadcast. Ritu, give us more details.
2: Well, of course, as you rightly pointed out, you have the law students here in Bengaluru who have now, you know, taken up this whole matter as well up in the arms and have been up in the arms demanding that this is at any cost not fair at all. They've been in fact demanding. They in fact have placed various demands including that of an apology as well, withdrawal too again. But however, needs to be seen because for the convocation as an event, how would really things pan out in the coming days? That is something that we'll have to wait and see. Back to you.
1: Thank you, Ritu, for getting us all those details. We'll of course keep coming back to you for more. A gunfire incident was reported at Varanasi Airport after a passenger's licensed pistol accidentally went off during a security check, injuring two security staffers. According to police, the passenger identified as Kamlesh Rai from Azamgarh was travelling to Mumbai and had already declared his licensed 7.62 mm pistol. During the standard frisking and security check by CISF and airline staff, a round in the chamber reportedly went off accidentally, injuring two ground staff employees. Both injured staffers are said to be stable and are receiving medical treatment.
3: कमलेश राय जी जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे. इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल उसको पहले से डिक्लेयर किया है. जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार सीआईएसएफ और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए दो ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं.
4: घटना बस वही हुई है कि डिक्लेयर्ड वेपन को हम लोगों को स्क्रीनिंग करना होता है. उसी में पैसेंजर ने बोले कि इसे ये अनलोडेड कंडीशन में ये देख लीजिए और देखने के लिए वो किए तब तक में गोली छूट चुका. उनको ये पता नहीं कि मालूम था या नहीं था वो पैसेंजर जाने, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो अनलोडेड है या अनलोडेड है. वो अनलोडेड कंडीशन में दिखाने के लिए वो ट्रिगर दबा दिए.
5: घटना सर यही हुई कि हम लोग स्क्रीनर है आई क्लास में, तो हम लोग का वेपन आते हैं तो डिक्लेयर वेपन उसी पे हम लोग करना है. बट पैसेंजर भी आए थे, एयरलाइन वाले भी आए थे. पैसेंजर ने जस्ट टोटल फिजिकल जो भी है वो ओजी के डेस्क पे रख करके वो करने लगे. पहले उन्होंने मैगजीन निकाला, देखा, प्लस उसमें लोडेड थी. उन्होंने ट्रिगर नीचे की तरफ दबा दी. उन्हें लगा कि मे भी नहीं हो या क्या पता गुस्से में किए हों, कुछ भी इरीटेट होकर के कि हाँ इसमें एमिनेशन है, ये लोग इरीटेट करते हैं, ये भी हो सकता है. उन्होंने जस्ट नीचे में तुरंत विद इन सेकेंड ही ट्रिगर दबा दिए.
1: All right, let's cut across to some latest news coming in. Annamalai says few TVK ministers have started to get percentage on tenders. Says he has audio of the few ministers saying they won without giving money to voters, but we gave money for votes. So we need to 2-4%. He has urged the chief minister to give focus on delivering non-corrupt governance.
6: கரப்ஷனுக்கு எதிராக இருப்பது உண்மைதான், அதையும் நாம் பார்க்கின்றோம். டெண்டர் பெரிய பெரிய டெண்டர்ல வாங்கல, இப்ப சில அமைச்சர்கள் இப்பதான் வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அவங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம வந்துட்டாங்க. சில அமைச்சர்கள் சொல்றாங்க, எங்கிட்ட ஆடியோவே இருக்கு, அவங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம வந்துட்டாங்க. தம்பி, நாங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்து வந்தோம், ஒரு 2% கொடு தம்பி, 3% கொடு தம்பி, 4% கொடு. இது முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் கவனத்திற்கு இப்பவே கொண்டு வர்றங்க ஐயா, ஒரு வருஷம்

0: They cite BCI's now withdrawn blackball order, and these students express strong disapproval. They say that they stand in solidarity with the Nalsar student and demand an apology with the Bar Council of India. You'd remember this entire controversy when the Bar Council of India had given a notice that none of the Nalsar students are going to be enrolled as advocates because they boycotted the presence of the Chief Justice of India at the convocation. Following massive outrage that erupted from the bar, from the members of the bar, from the members of the judiciary and also from the students, the Bar Council of India within an hour withdrew the order. And now yet again we have another student body which is boycotting this. Ritu with us on the broadcast. Ritu, give us more details.
1: Well, of course, as you rightly pointed out, you have the law students here in Bengaluru who have taken up this whole matter as well up in the arms and have been up in the arms demanding that this is at any cost not fair at all. They've been in fact demanding. They in fact have placed various demands including that of an apology as well, withdrawal too again. But however, needs to be seen because for the convocation as an event, how would really things pan out in the coming days? That is something that we'll have to wait and see. Back to you.
0: Thank you, Ritu, for getting us all those details. We'll of course keep coming back to you for more. A gunfire incident was reported at Varanasi Airport after a passenger's licensed pistol accidentally went off during a security check, injuring two security staffers. According to police, the passenger identified as Kamlesh Rai from Azamgarh was travelling to Mumbai and had already declared his licensed 7.62mm pistol. During the standard frisking and security check by CISF and airline staff, a round in the chamber reportedly went off accidentally, injuring two ground staff employees. Both injured staffers are said to be stable and are receiving medical treatment.
2: Kamlesh Rai ji, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो Air India Express की फ्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे. इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल, उसको पहले से डिक्लेयर किया है. जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार CISF और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी, तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए दो ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं.
3: घटना बस वही हुई है कि डिक्लेयर्ड वेपन को हम लोगों को स्क्रीनिंग करना होता है. उसी में पैसेंजर ने बोले कि इसे ये अनलोडेड कंडीशन में ये देख लीजिए, और देखने के लिए वो किए, तब तक में गोली छूट चुका. उनको ये पता नहीं कि मालूम था या नहीं था, वो पैसेंजर जाने, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो अनलोडेड है या अनलोडेड है. वो अनलोडेड कंडीशन में दिखाने के लिए वो ट्रिगर दबा दिए.
4: घटना सर यही हुई कि हम लोग स्क्रीनर है आई क्लास में, तो हम लोग का वेपन आते हैं तो डिक्लेयर वेपन ओजी पे हम लोग को करना है. बट पैसेंजर भी आए थे, एयरलाइन वाले भी आए थे. पैसेंजर ने जस्ट टोटल फिजिकल जो भी है वो ओजी के डेस्क पे रख करके वो करने लगे. पहले उन्होंने मैगजीन निकाला, देखा, प्लस उसमें लोडेड थी. उन्होंने ट्रिगर नीचे की तरफ दबा दी. उन्हें लगा कि मे बी नहीं हो, या क्या पता गुस्से में किए हों, कुछ भी इरिटेट हो करके कि हाँ इसमें एमिनेशन है, ये लोग इरिटेट करते हैं, ये भी हो सकता है. उन्होंने जस्ट नीचे में तुरंत विदिन सेकंड ही ट्रिगर दबा दिए.
0: All right, let's cut across to some latest news coming in. Annamalai says few TVK ministers have started to get percentage on tenders. Says he has audio of the few ministers saying they won without giving money to voters, but we gave money for votes. So we need to 2-4%. He has urged the chief minister to give focus on delivering non-corrupt governance.
5: மறுபடி ஆரம்பிச்சிருக்கு, பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். கரப்ஷன், முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் கரப்ஷனுக்கு எதிராக இருப்பது உண்மைதான், அதையும் நாம் பார்க்கின்றோம். டெண்டர், பெரிய பெரிய டெண்டர்ல வாங்கல, பல அமைச்சர்கள் இப்பதான் வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அவங்களா ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம வந்துட்டாங்க. சில அமைச்சர்கள் சொல்றாங்க, எங்கிட்ட ஆடியோவே இருக்கு, அவங்களா ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம வந்துட்டாங்க. தம்பி, நாங்களா ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்து வந்தோம், ஒரு 2% கூட. தம்பி 3% கூட, தம்பி 4% கூட. இது முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் கவனத்திற்கு இப்பவே கொண்டு வர்றங்க ஐயா. ஒரு வருஷம் கழிச்சு நாங்க பிரச்சனை பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க, அதை உங்களுடைய அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் அதை அறிவுறுத்துங்க.
0: An Annamalai's We the Leaders makes its second big show of strength in Chennai, but this time the message is political change over blame and a new political path. Annamalai spoke about his resignation from the BJP, meeting with Amit Shah, and then also delivered a message to Vijay's rivals. To Vijay's rivals, the newly sworn-in Chief Minister Annamalai, said that the government must be given a year's time to deliver and added that he's in no rush to topple the incumbent government. Annamalai says his politics is not about convenience but principles, insisting he chose Tamil Nadu over Delhi despite Amit Shah's offer. Rejecting BJP's B-team tag, Annamalai says his decision to stay in the state proves where his political priorities are. After recent remarks against Trisha and Chief Minister Vijay's family, Annamalai has drawn a line at personal attacks, condemning defamatory remarks against women and families. He says Gen Z and millennials are looking for a different kind of politics.
5: அதற்கும் பீதி லீடர்ஸ் அந்த அரசியலுக்காக நம்மை நாம் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த பல அரசியல் மேடையில் நடிகை திட்டுறது, நடிகரை திட்டுறது, ஒருத்தருடைய தந்தை தாயை பத்தி பேசுறது, குடும்பத்தை பத்தி பேசுறது, அப்பாவை பத்தி பேசுறது, அதெல்லாம் போச்சுங்க ஐயா, அதெல்லாம் போச்சு. சட்டசபையில் அநாகரிகமாக வம்பு கிழித்து ஒரு பெண்ணை நயவஞ்சகமாக தவறான வார்த்தையில சித்தரிக்கிறது, அதை வெளியே வந்து சொல்லுவாங்க. எங்க தலைவரை பாத்தீங்களா, எப்படி சொன்னாரு பாத்தீங்களா, எவ்வளவு டபுள் மீனிங்கோட சொன்னாரு பாத்தீங்க, அந்த அரசியல் எல்லாம் போச்சுங்க ஐயா, போச்சு. 1980க்கு பிறகு பிறந்தவர்கள் ஜென்சி மில்லேனியல் 65 கோடி பேர், அவர்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கலீங்க ஐயா.
0: All right, some other latest news coming in. Chief Minister Vijay has strongly condemned the killing of 3 suspected poachers in Karnataka's Chamarajnagar, calling it heartbreaking incident and the Forest Department's explanation unacceptable. The TVK chief has demanded an honest high-level probe punishment for those responsible for killing of Tamils residing in villages in Chamarajnagar. Cutting across to my colleague Vijay Gopal Muralidharan, joining us from Chennai. Vijay, give us more perspective. What has the CM said?
6: Well, Anusha, that's right. CM C. Joseph Vijay has expressed shock over the incident. He also strongly condemned the incident. He also urged the Karnataka state government to form high-level committee to probe the incident. He also urged the Karnataka government to take appropriate steps to avoid such similar incidents in future. He also expressed the disappointment over the clarification given by the Karnataka Forest Department by saying that it is unacceptable clarification from the Karnataka state government. He strongly condemned the shootout of 3 alleged poachers, suspected poachers in an alleged shootout. He said those three are Tamilians and those are all innocent lives. Remember, even other political parties also have strongly condemned the incident. They are strongly condemned the Karnataka state government over the incident. Tomorrow, as we have a legislative assembly session, we can expect the issue will be discussed inside the legislative session also, assembly also, Anusha.
0: All right. Thank you, Vijay, for joining us on the broadcast and getting us all those details. And as my colleague was just pointing out, that the 3 suspected poachers who have been shot dead in the forest of Chamarajnagar by the Karnataka Forest Department, the incident has come to light from the Shagya Forest area of the Kaveri Wildlife Sanctuary. Chief Minister D.K. Sivakumar has taken cognizance, ordered a magistrate-level inquiry. He's assured that adequate compensation will be given to the victim's family. The deceased have been identified as Anthony Swami, Peter and Kumar. They allegedly fired at the Forest Department officials. They were killed in the crossfire. Chief Minister D.K. Sivakumar from Karnataka has ordered appropriate action. Tamil Nadu leader M.K. Stalin has demanded Tamil Nadu government to take action, citing that those killed are residents of Tamil Nadu. PMK Chief Ambumani Ramadas has also criticized the killing and demanded a CBI probe.
7: ನನಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ನನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದೂಕ ಸೀಜ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಂಸ 2 ಚೀಲ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೀಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಸೀಜ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಥರ ಆದರೆ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೂಟ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಬುಲೆಟ್ ಗಾನ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಜೆಪಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫೀಸರ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ರಾಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ಸೊ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ.
8: ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಮರ್ಡರ್. Therefore, it is unbecoming of the forest officers to take law into their hand. And killing people is not done. It is not in our law or in constitution. And it is totally immoral, unconstitutional, as well as unlawful. And it has to be treated as a murder and inquired upon. The FIR should be registered as a murder. And then inquiry has to be done by a SIT. Under the supervision of the High Court judge.
0: We'll keep a track of that story and much more. For now, slipping into a very short break. Stay tuned, stay with us.
9: A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanal, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, Actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, Commerce, Security, Infrastructure, Tourism, Soft Power. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
10: so many attacks,
9: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
10: It's incredible.
9: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
10: Welcome to Left, Right and Center.
9: Hard facts.
10: War struck country.
0: And as extreme heat grips parts of the world, Japan has come up with an unusual way to beat the heat, a personal cooling boot designed to rapidly lower the body temperature. Here is how the cooling box works. Japan has a new answer to extreme heat with its Dohimon or cooling box. The booth rapidly cools the body, pumping 5-degree air into a cabin kept at 15 degrees. It has three cooling modes and a 20-minute auto shut-off. Built for heat-exposed workers, it can offer a quick escape from dangerous temperatures. The booth could also help during emergencies when air conditioning is unavailable. Price tag is 1.5 million yen or nearly $9,000. Bureau Report, NDTV World. Well, that report and much more is up on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you for watching.

0: At the Nalsar protest, they opposed CGI Suryakant at the convocation. They cite BCI's now withdrawn blackball order, and these students express strong disapproval. They say that they stand in solidarity with the Nalsar student and demand an apology with the Bar Council of India. You remember this entire controversy when the Bar Council of India had given a notice that none of the Nalsar students are going to be enrolled as advocates because they boycotted the presence of the Chief Justice of India at the convocation. Following massive outrage that erupted from the bar, from the members of the bar, from the members of the judiciary and also from the students, the Bar Council of India within an hour withdrew the order. And now yet again we have another student body which is boycotting this. Ritu with us on the broadcast. Ritu, give us more details.
1: Well, of course, as you rightly pointed out, you have the law students here in Bengaluru who have now, you know, taken up this whole matter as well up in the arms and have been up in the arms demanding that this is at any cost not fair at all. They've been in fact demanding. They in fact have placed various demands including that of an apology as well, withdrawal too again. But however, needs to be seen because for the convocation as an event, how would really things pan out in the coming days? That is something that we'll have to wait and see. Back to you.
0: Thank you, Ritu, for getting us all those details. We'll of course keep coming back to you for more. A gunfire incident was reported at Varanasi Airport after a passenger's licensed pistol accidentally went off during a security check, injuring two security staffers. According to police, the passenger identified as Kamlesh Rai from Azamgarh was travelling to Mumbai and had already declared his licensed 7.62 mm pistol. During the standard frisking and security check by CISF and airline staff, a round in the chamber reportedly went off accidentally, injuring two ground staff employees. Both injured staffers are said to be stable and are receiving medical treatment.
2: कमलेश राय जी जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे. इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल उसको पहले से डिक्लेयर किया है. जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार सीआईएसएफ और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी, तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए दो ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं.
3: घटना बस वही हुई है कि डिक्लेयर्ड वेपन को हम लोगों को स्क्रीनिंग करना होता है. उसी में पैसेंजर ने बोले कि इसे ये अनलोडेड कंडीशन में ये देख लीजिए. और देखने के लिए वो किए, तब तक में गोली छूट चुका. उनको ये पता नहीं कि मालूम था या नहीं था, वो पैसेंजर जाने, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो अनलोडेड है या अनलोडेड है. वो अनलोडेड कंडीशन में दिखाने के लिए वो ट्रिगर दबा दिए.
4: घटना सर यही हुई कि हम लोग स्क्रीनर है आई क्लास में, तो हम लोग का वेपन आते हैं तो डिक्लेयर वेपन उसी पे हम लोग करना है. बट पैसेंजर भी आए थे, एयरलाइन वाले भी आए थे. पैसेंजर ने जस्ट टोटल फिजिकल जो भी है वो ओजी के डेस्क पे रख करके वो करने लगे. पहले उन्होंने मैगजीन निकाला, देखा, प्लस उसमें लोडेड थी. उन्होंने ट्रिगर नीचे की तरफ दबा दी. उन्हें लगा कि मे भी नहीं हो, या क्या पता गुस्से में किए हों कुछ भी, इरीटेट होकर के कि हाँ इसमें एमिनेशन है, ये लोग इरीटेट करते हैं, ये भी हो सकता है. उन्होंने जस्ट नीचे में तुरंत विद इन सेकेंड ही ट्रिगर दबा दिए.
0: All right, let's cut across to some latest news coming in. Annamalai says few TVK ministers have started to get percentage on tenders. Says he has audio of the few ministers saying they won without giving money to voters, but we gave money for votes. So we need to 2-4%. He has urged the chief minister to give focus on delivering non-corrupt governance.
5: கரப்ஷனுக்கு எதிராக இருப்பது உண்மைதான், அதையும் நாம் பார்க்கின்றோம். டெண்டர் பெரிய பெரிய டெண்டர்ல வாங்கல, இப்ப சில அமைச்சர்கள் இப்பதான் வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அவங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம வந்துட்டாங்க. சில அமைச்சர்கள் சொல்றாங்க, எங்கிட்ட ஆடியோவே இருக்கு, அவங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம வந்துட்டாங்க. தம்பி, நாங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்து வந்தோம், ஒரு 2% கொடு. தம்பி 3% கொடு. தம்பி 4% கொடு. இது முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் கவனத்திற்கு இப்பவே கொண்டு வர்றங்க ஐயா. ஒரு வருஷம் கழிச்சு நாங்க பிரச்சனை பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க அதை உங்களுடைய அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் அதை அறிவுறுத்துங்க.
0: An unanimalized We the Leaders makes its second big show of strength in Chennai, but this time the message is political change over blame and a new political path. Unanimalized spoke about his resignation from the BJP, meeting with Amit Shah, and then also delivered a message to Vijay's rivals. To Vijay's rivals, the newly sworn-in Chief Minister Annamalai said that the government must be given a year's time to deliver and added that he's in no rush to topple the incumbent government. Annamalai says his politics is not about convenience but principles.

0: members of the bar, from the members of the judiciary, and also from the students, the Bar Council of India within an hour withdrew the order. And now yet again we have another student body which is boycotting this. Ritu with us on the broadcast. Ritu, give us more details.
1: Well, of course, as you rightly pointed out, you have the law students here in Bengaluru who have now, you know, taken up this whole matter as well up in the arms, and have been up in the arms demanding that this is at any cost not fair at all. They've been in fact demanding, in fact have placed various demands including that of an apology as well, withdrawal too again. But however, needs to be seen, because for the convocation as an event, how would really things pan out in the coming days? That is something that we'll have to wait and see. Back to you.
0: Thank you, Ritu, for getting us all those details. We'll of course keep coming back to you for more. A gunfire incident was reported at Varanasi Airport after a passenger's licensed pistol accidentally went off during a security check, injuring two security staffers. According to police, the passenger identified as Kamlesh Rai from Azamgarh was travelling to Mumbai and had already declared his licensed 7.62 mm pistol. During the standard frisking and security check by CISF, an airline staff, a round in the chamber reportedly went off accidentally, injuring two ground staff employees. Both injured staffers are said to be stable and are receiving medical treatment.
2: कमलेश राय जी, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे. इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल, उसको पहले से डिक्लेयर किया है. जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार सीआईएसएफ और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी, तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए दो ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं.
3: घटना बस वही हुई है कि डिक्लेयर्ड वेपन को हम लोगों को स्क्रीनिंग करना होता है. उसी में पैसेंजर ने बोले कि इसे ये अनलोडेड कंडीशन में ये देख लीजिए, और देखने के लिए वो किए, तब तक में गोली छूट चुका. उनको ये पता नहीं कि मालूम था या नहीं था, वो पैसेंजर जाने, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो अनलोडेड है या अनलोडेड है. वो अनलोडेड कंडीशन में दिखाने के लिए वो ट्रिगर दबा दिए.
4: घटना सर यही हुई कि हम लोग स्क्रीनर है आई क्लास में, तो हम लोग का वेपन आते हैं तो डिक्लेयर वेपन उजी पे हम लोग करना है. बट पैसेंजर भी आए थे, एयरलाइन वाले भी आए थे. पैसेंजर ने जस्ट टोटल फिजिकल जो भी है वो ओजी के डेस्क पे रख करके वो करने लगे. पहले उन्होंने मैगजीन निकाला, देखा, प्लस उसमें लोडेड थी, उन्होंने ट्रिगर नीचे की तरफ दबा दी. उन्हें लगा कि मे भी नहीं हो, या क्या पता वो गुस्से में किए हों, कुछ भी इरीटेट हो करके कि हाँ इसमें एमिनेशन है, ये लोग इरीटेट करते हैं, ये भी हो सकता है. उन्होंने जस्ट नीचे में तुरंत विद इन सेकेंड ही ट्रिगर दबा दिया.
0: All right, let's cut across to some latest news coming in. Annamalai says few TVK ministers have started to get percentage on tenders. Says he has audio of the few ministers saying they won without giving money to voters, but we gave money for votes, so we need to 2-4%. He has urged the chief minister to give focus on delivering non-corrupt governance.
5: மறுபடி ஆரம்பிச்சிருக்கு பாட்டு எடுத்தா இருக்கும். கரப்ஷன், முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் கரப்ஷனுக்கு எதிராக இருப்பது உண்மைதான், அதையும் நாம் பார்க்கின்றோம். டெண்டர், பெரிய பெரிய டெண்டர்ல வாங்கல, இப்ப சில அமைச்சர்கள் இப்பதான் வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அவங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம வந்துட்டாங்க. சில அமைச்சர்கள் சொல்றாங்க, எங்கிட்ட ஆடியோவே இருக்கு, அவங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம வந்துட்டாங்க. தம்பி, நாங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்து வந்தோம், ஒரு 2% கூட தம்பி, 3% கூட தம்பி, 4% கூட. இது முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் கவனத்திற்கு இப்பவே கொண்டு வர்றங்க ஐயா. ஒரு வருஷம் கழிச்சு நாங்க பிரச்சனை பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க, அதை உங்களுடைய அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் அதை அறிவுறுத்துங்க.
0: An Annamalai's We the Leaders makes its second big show of strength in Chennai, but this time the message is political change over blame and a new political path. Annamalai spoke about his resignation from the BJP, meeting with Amit Shah, and then also delivered a message to Vijay's rivals. To Vijay's rivals, the newly sworn in Chief Minister Annamalai said that the government must be given a year's time to deliver, and added that he's in no rush to topple the incumbent government. Annamalai says his politics is not about convenience but principles, insisting he chose Tamil Nadu over Delhi despite Amit Shah's offer. Rejecting BJP's B-team tag, Annamalai says his decision to stay in the state proves where his political priorities are. After recent remarks against Trisha and Chief Minister Vijay's family, Annamalai has drawn a line at personal attacks, condemning defamatory remarks against women and families. He says Gen Z and millennials are looking for a different kind of politics.
5: அதற்கும் வீத லீடர்ஸ் அந்த அரசியலுக்காக நம்மை நாம் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த பல அரசியல் மேடையிலேறி நடிகை திட்டுறது, நடிகரை திட்டுறது, ஒருத்தருடைய